तेनी संगम आठसठ अंक समाई हे। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बहे अदली

गुण जाने, गुर के शब्द हर नाम खाने, अन दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुका गागे, गुर सेवा ते सब किस पाए, होमे मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुर के शब्दे सोहा गे, गुर का शब्द अमृत है बाणी, अन दिन घर का नाम खाणी, हर घर सच्चा बसे कट अंतर, सो काट निर्मलता गागे, सेवक सेवे शब्द सलाह है, सदा रंगरा ते हर गुण गाव है, आपे बगसे शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा हे, शब्दे अकथ कथे साला हे, मेरे प्रसा ते वे प्रवाह हे, आपे गुणदाता शब्द मिलाए, शब्दे कारस ताहा हे, मन मुला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए, बिखिया राते बिखिया खोज है, मर जन्मे दुख ताहा हे, आपे आप साला हे, तेरे गुण प्र तुझ ही माहे, तू आ सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा हे, बिन गुरदाते कोई न पाए, ला कोटी जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते कट अंतर वस्या, सब दे सच सलाहा हे, छे जन मिले तुर आप मिलाए, साची बाणी शब्द सुहाए, नानक जान गुण गावे निसाचे, गुण गावे गुणी समाहा हे, मारू महला तीजा, नेचर एक सच्चा सा सोई, पूरे गुरते सोजी होई, हरस पीने सदा त्यायन, गुरमत सील सनाहा हे, अंदर रंग सदा सचियारा, गुर के शब्द हर नाम प्यारा, नौन नाम से आकट अंतर, छोड़िया माया का लागा हे, रहित राजे दुर्मत दोई, बिन सदगुर से वे एक न होई, एक त्यायन, सदा सुख पायन, निचल राज तनाहा हे, आमन जाना रखे न कोई, जमन मरण तिसे ते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावहो, गत मुगत तिसे ते पाहा हे, सच संजम सदगुरु द्वारे, होमे क्रोध शब्द निवारे, सदगुर से सदा सुख पाइये, तीर संतोख सब ताहा हे, होमे मोह उपजे संसारा, सब जग बिन से नाम सारा, बिन सदगुरु से वे नाम न पाइये, नाम सच्चा जग लाहा हे, सच्चा अमर शब्द सुहाया, पंच शब्द मिलवाजा वाया, सदा कार्ज सत नाम सुहेला, बिन शब्दे कार्ज केहा हे, खिन में हसे खिन में रोवे, दूजी तो मत कार्ज न होवे, संजोग विजो करते लिख पाए, कीर्तना चले चलाहा हे, जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए, हर सु सद ही रहे सुमाए, गुर कृपा ते मिले वड्याई, होमे रोग न ताहा हे, रस कद खाए पिंड वधाए, पेख करे गुर शब्द न कमाए, अंतर रोग मा दुख भारी, पिष्टा माए सुमागा हे, वेद पढ़े पढ़ बाद वखाणे, घट में ब्रह्म ते शब्द न पछाणे, गुरमुख होवे सो तत् बिलोवे, रसना हरस ताहा हे, कारवा छोडे बाहर तावे, मन अंधे साधना पावे, अंस राती इसना फीकी बोले, हरस मूल न ताहा हे, मन मुख देखी परम पतारो, दुर्मत मरे नित होए खुवारो, काम क्रोध मन दूजे लाया, सुभ ने सुख न ताहा हे, कंचन देखी शब्द पतारो, अंदर भोग भोगे हरस्यों प्यारो, मैला अंदर गैर महल पाए, पाणा बुझ समाहा हे, आपे देवे देवन हारा, तिस आगे नहीं किसे का चारा, आपे बगसे शब्द मिलाए, ते दास शब्द अथाहा हे, जियो पिंड सब गे तिस केरा, सच्चा साहिब ठाकुर मेरा, नानक गुरबाणी हर पाया, हार जप जाप समाहा हे, मारू महला तीजा, गुरमुख नाद वेद बीचार, गुरमुख ज्ञान ध्यान अपार, गुरमुख कार करे प्रापावे, गुरमुख पूरा पाए दा, गुरमुख मनुमा उल्ट परावे, गुरमुख बाणी नाद बजावे, गुरमुख सचरते बैरागी, निकरवासा पाए दा, गुर की साखी अमृत पाखी, सच्चे शब्दे सच सुपाखी, सदा सच रंग राता मन मेरा, सच्चे सच समाए दा, गुरमुख मन निर्मल सत सरनावे, मैल न लागे सच समावे, सचो सच कुमावे सदगी,
सच्ची भगत रड़ाएं दा गुरमुख सत बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करणी सदगी सच कहे दिन राती अवरा सच कहाए दा गुरमुख सच्ची ऊतम बाणी गुरमुख सचो सच वखाणी गुरमुख स सेवे सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाए दा गुरमुख होवे सो सोझी पाए होमे माया परम गवाए गुर की पौड़ी ऊतम ऊची दर सच्चे हर गुण गाए दा गुरमुख सत्संजम करणी सार गुरमुख पाए मोह द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाए दा गुरमुख होवे मन खोज सुनाए सच्चे नाम सदा लिव लाए जो तुझ पावे सोई करसी जो सच्चे मन पाए दा जा तुझ पावे सदगुरु मिलाए जा तुझ पावे ता मन वसाए अपने पाने सदा रंग राता पाने मन वसाए दा मन कर्म करे सो चीजे बहुते पेख करे नी पीजे दिख्या राते दुख कमावे दुखे दुख समाए दा गुरमुख होवे सो सुख कमाए मरण जीवन की सोझी पाए मरण जीवन जो समकर जाने तो मेरे प्रापाए दा गुरमुख मरे सो हे प्रवान आमन जाना शब्द पछाण मरे न जम्मे ना दुख पाए मन ही मने समाए दा सेवड पागी जिन्नी सतगुर पाया होमे विचो मोह चुकाया मन निर्मल फिर मैल न लागे दर सच्चे सोभा पाए दा आपे करे कराए आपे आपे वेखे थाव्यो थापे गुरमुख सेवा मेरे प्रापावे सजुन लेखे पाए दा गुरमुख सचो सच कमावे गुरमुख निर्मल मैल न लावे नानक नाम रते विचारी नामे नाम समाए दा मारू मुहला तीजा आपे सिरठ हुक्म सब साजी आपे थाप थाप निवाजी आपे न्याओ करे सब साचा सचे सच मिलाए दा काया कोट गए आकारा माया मोह पसरिया पासारा बिन शब्दे पसमे की ढेरी खेहू खेर लाए दा काया कंचन कोट अपारा जिस ज रविया शब्द अपारा गुरमुख गावे सदा गुण साचे मिर प्रीतम सुख पाए दा काया हर मंदर हर आप सवारे तिस हर जू वसे मुरारे गुर के शब्द वंजन वापारी नदरी आप मिलाए दा सो सूच जे क्रोध निवारे शब्दे बूझे आप सवारे आपे करे कराए करता आपे मन वसाए दा निर्मल भगत है निराली मन तन तोवे शब्द विचारी आन दिन सदा रहे रंग राता कर कृपा भगत कराए दा इस मन मंदिर में मनुआ तावे सुख पल्लर त्याग महा दुख पावे दिन सब गुर पेठे ठौर न पावे आपे खेल कराए दा आप अपरंपर आविचारी आपे मिले करनी सारी क्या को कार करे बेचारा आपे बख्श मिलाए दा आपे सतगुरु मिले पूरा सच्चे शब्द महाबल सूरा आपे मिले दे वड्याई सच्चे सुचित लाए दा कर ही अंदर सच्चा सोई गुरमुख विरला बूझे कोई नाम दान वसिया कट अंतर रसना नाम त्याए दा जसंतर पवे अंतर नहीं पाले माया मुहे बद्दा जमकाले जम की फासी कभू ना टूटे दूजे पाए परमाए दा जब तब संजम होर कोई नाही जाबला गुर का शब्द ना कमाही गुर के सद मिलिया सज पाया सच्चे सच सुमाए दा काम क्रोध सबर संसारा बहु कर्म कमावे सब दुखा पसारा सब गुर सेवे से सुख पावे सच्चे शब्द मिलाए दा पौन पानी है बैसंतर माया मोह वरते सब अंतर जिनकी तेजा तसे पछाणे माया मोह चुकाए दा एक माया मोह गर्भ वे आपे होमे होए रहे है आपे जम काले की खबर ना पाई अंत गया पछताए दा जिन्हों पाए सोबित जाने गुरमुख देवे शब्द पछाणे नानक दास कहे बेनंती सच नाम चित लाए दा मारू मोहला तीजा आ जुगाद दया पद दाता पूरे गुर के शब्द पछाता
तुझनु सेवे से तुझे सुमाव है, तू आपे मेल मलाएंदा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, जी जंत तेरी सरनाई, ज्यों तुझ पावे तिवे चलावे, तू आपे मार्ग पाएंदा, है पी सच्चा हो सी सोई, आपे साजे अवर ना कोई, सबना सार करे सुखदाता, आपे रिजक पहुंचाएंदा, अगम अगोचर अलख पारा, कोई न जाने तेरा परवारा, अपना आप शाने आपे, गुरमती आप बुझाएंदा, पाताल पुरिया लो आकारा, तेज वरते हुक्म करारा, हुक्मे साजे हुक्मे टाहे, हुक्मे मेल मलाएंदा, हुक्मे बूझे हुक्म सलाहे, अगमे गोचर वे परवाहे, जेही मत दे सो होवे, तू आपे शब्द बुझाएंदा, आंध आर जाशी दी जाए, रैन दिन दो साखी आए, मानव अंध न चेते मूड़ा, सिर ऊपर काल रुआएंदा, मन तन शीतल गुरचरणी लगा, अंतर परम गया पाओ भागा, सदा आनंद सच्चे गुण गावे, सच बाणी बोलाएंदा, जिन तू जाता कर्म विधाता, पूरे भाग और शब्द पछाता, जात पात सच सच्चा ससोई, हो में मार मिलाएंदा, मन कठोर दूजे पाए लागा, परमे पूला फिरे अपागा, कर्म होवे ता सदगुर सेवे, सहजे ही सुख पाएंदा, लग चौरासी आप्यो पाए, मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाए, बिन भगती बिष्टा विच वासा, बिष्टा विच फिर पाएंदा, कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाए, बिन कर्मा क्यों पाया जाए, आपे करे कराए करता, जो फावे तिवे चलाएंदा, सिमरत सास अंत न जाने, मूर्ख अंधा तत न पछाणे, आपे करे कराए करता, आपे परम भुलाएंदा, सब कुछ आपे आप कराए, आपे सिर सिर तंदे लाए, आपे थाप थापे वेखे, गुरमुख आप बुझाएंदा, सच्चा साहेब गैर गंभीरा, सदा सलाही तामन तीरा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाएंदा, आप निरालम होर तंदे लोई, गुर प्रसादी बूझे कोई, नानक नाम से कट अंतर, गुरमती मेल मिलाएंदा, मारू महला तीजा, जो क्षति कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आख वखाणे, तू आपे कीमत पाएंदा, ओ अंकार सब श्रेष्ठ उपाई, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेग करे सब साचा, आपे पन कढ़ाएंदा, बारीगर एक बारी पाई, पूरे गुरते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर शब्दी, साचे से उचित लाएंदा, बाजे बाजे तुन आकारा, आ बजाए बजामन हारा, घड़ घड़ पौन वह एक रंगी, मिल पवने सब बजाएंदा, करता करे सुने चो होवे, गुर के शब्दे होमे खोवे, गुर प्रसादी किसे दे वड्याई, नामो नाम ध्याएंदा, गुर सेवे जेवड़ होर लाहा नाही, नाम मन वसे नामो सालाही, नामो नाम सदा सुखदाता, नामो लाहा पाएंदा, बिन नावे सब दुख संसारा, बहु कर्म कमावे वदे विकारा, नाम न सेवे क्यों सो पाइए, बिन नावे दुख पाएंदा, आप करे ते आप कराए, गुर प्रसादी किसे बुझाए, गुरमुख होवे से बंधन तोड़े, मुक्ति कह कर पाएंदा, गंत गणे सो जले संसारा, सहसा मूल ना चुके विकारा, गुरमुख होवे सो गंत चुकाए, सच्चे सच समाएंदा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सारा हे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाएंदा, जब तब संजम नाम प्यारा, किलवे काटे काटन हारा, हर के नाम तान मन शीतल होआ, सहजे सहज समाएंदा, अंतर लो मन मैले मन लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वापारा, कूड़ बोल दुख पाएंदा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर के पाने चले दिन राती, नाम चेत सुख पाएंदा, आप सरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई,
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ, ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦਾ ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰੇ। ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਨਾ ਹੋਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਲੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮਨ ਵਸਿਆਵੇ, ਮਨ ਮਾਰੇ ਮਨੇ ਸੁਮਾਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਦੇ ਆਪੇ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਸਭ ਜੀ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾ ਸੁਮਾਰ ਸਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਵਸਾਏ ਦਾ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਜੂ ਦਾਤਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹ, ਉਸ ਦਿਲ ਨਾ ਤੁਮਾਏ ਵੇ ਪਰਵਾਹ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੁਨੇਚੋ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਬਨਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਗੁਰਸਬਦੀ ਮੇਲ ਆਏ ਦਾ। ਚੌਦੇ ਪਵਨ ਤਰੇ ਖਟ ਨਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਾਏ ਅੰਤਰ ਨਾਲੇ, ਨਾਵੇ ਕਾਵਾ ਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਸਬਦੀ ਕੋ ਪਾਏ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦਾ, ਫਿਰਦੇ ਆਏ ਉੱਠੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਸਹਿਜੇ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਆਪੇ ਭਗਤ ਕਰਾਏ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਤਿਨੀ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਮਾਰੀਏ ਦੁੱਖ ਸੁਭਾਇਆ, ਮੱਥੇ ਕਾਲੇ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ, ਸਹਿਜ ਪਏ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ ਸਦਗੀ, ਸੱਚੇ ਮੇਲ ਮਲਾਏ ਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਸਤ ਸੱਚੇ ਕਾ ਆਪੇ ਦਾਤਾ, ਜੇ ਦੇਵੇ ਸੋ ਸਚ ਪਾਏ ਦਾ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਦਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਬੂਝੇ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਦਾ। ਹਉਮੈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਆਗੇ ਮੋਹ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਮਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ ਲੇਖਾ ਲੇਵੇ, ਜਿਉਂ ਤਿਲ ਖਾਣੀ ਪੀੜਾਏ ਦਾ। ਪੂਰੇ ਪਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੇਵੇ ਕੋਈ, ਜਮ ਕਾਲ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਹਿਲ ਸੱਚੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦਾ। ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਏ, ਪੂਰੇ ਪਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੇ ਸਭ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਦੇਵੇ ਸੋ ਪਾਏ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸਦਾ ਕੜ ਚਾਨਣ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਏ ਦਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੇ ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ, ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬ ਮੂਹੇ ਅਭਾਗੇ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਘਰ ਦਰ ਅੰਦਰ ਨ ਆਵੇ, ਜਮਦਰ ਵਾਧਾ ਦੁਖ ਪਾਏ ਦਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜ਼ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਤਿਸ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਮਮਤਾ ਕਾੜ ਸੱਚ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਵਣਜੇ ਵਾਪਾਰੀ, ਨਾਮੋ ਲਾਹਾ ਪਾਏ ਦਾ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਸਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਮੁਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੇ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦਾ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜੋ ਤੁ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਪਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਭਾਣੇ ਵੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਚੇ ਬਹੁ ਤੇਰੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਪ ਮਨਾਏ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਦਿਆਏ, ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ ਤੋ ਤੁਝੇ ਸਮਾਏ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਭਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕਰਾਏ ਦਾ। ਜਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ, ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਦੇ ਤੁਸ ਭਾਏ ਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਕਰੇ ਚਿਤਰਾਈ, ਭਾਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਈ, ਪਰਮੇ ਪੂਲਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਕਰ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਪਾਏ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੁਰ ਫੁਰਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਾਏ, ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦਾ। ਸਭ ਨਾਵ ਉਪਜੇ ਨਾਵ ਸ਼ੀਜੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੰਤਨ ਪੀਜੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਰਸ ਭੀਜੇ, ਰਸੀ ਤੇ ਰਸ ਪਾਏ ਦਾ। ਮਹਿਲ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਕੋ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਸੋਈ ਸੱਚ ਪਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਮਿਲਾਏ ਦਾ। ਨਾਮ ਸਾਰ ਮਨ ਤਨ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਰੋਗ ਕਮਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਮਨ ਤਨ ਹੈ ਕੁਸ਼ਟੀ, ਨਰਕੇ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ਦਾ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਦੇਹ, ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਨੇਹ, ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨੇ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ਦਾ। ਥੋ ਕੋ ਵਣਜ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰਾ,
विणनावे सब टोटा संसारा नांगो आया नांगो जासी विणनावे दुख पाए दा जिसनु नाम दे सो पाए गुर के शब्द घर मन नमसाए गुर कृपा ते नाम सिया कट अंतर नामो नाम त्याए दा नावे नू लोचे जेती सब आई नाव तिना मिले तुर पुरब कमाई जिन्नी नाव पाया से वड़ पागी गुर के शब्द मिलाए दा काया कोड अत अपारा तिरज भय प्रव करे विचारा सच्चा न्याओ सचो वा पारा निचल वासा पाए दा अंतर कर बंके थान सुहाया गुरमुख विरले किने थान पाया एत सास निभे सारा गे सच्चे हर सच्चा मन वसाए दा मेरे करते एक बणत बनाई इस देही विच सब वध पाई नानक नावण जे रंग राते गुरमुख को नाम पाए दा मारू महला तीजा काया कंचन शब्द विचारा तिथे हर अवस्थे जिदा अंत न पारा वारा आन दिन हर सेव हो सच्ची बाणी हर चेते तिन बलहारे जाओ गोर कै सब तिन मेल मिलाओ तिन की तूर लाई मुख मस्तक सत संगत भय गुण गाए दा हर के गुण गावा ते हर प्रभावा अंतर हर नाम शब्द सुहाव गुर बाणी चौकुंडी सुनिए सचे नाम समाए दा सोजन साचा जे अंतर पाले गोर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदरी नदर मिलाए दा वड़े भाग यो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिर शब्दे सब अंध अंधेरा गुरमुख से बुझाए दा एक कित आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए ये वेला फिर हाथ न आवे पाग खिसे पछताए दा गुर के शब्द पवित्र शरीरा तेज विच वसे सतगुणी गहीरा सचो सद वेखे सब दाई ससुण मन नमसाए दा होमे गंध गुर शब्द निवारे हर जू हिरदे रखो उर तारे गुर के शब्द सदा सा लाहे मिल साचे सुख पाए दा सो चेते जिस आप चेताए गुर के शब्द वसे मन आए आपे वेखे आपे बूझे आपे आप समाए दा जेन मन विच वत पाई सोई जाने गुर के शब्दे आप शाने सोई जन निर्मल बाणी शब्द सुनाए दा एक काया पवित गए शरीर गुर शब्दी चेते गुणी गहीर अन दिन गुण गावे रंग राता गुण के गुणी समाए दा यो शरीर सा मूल गए माया दूजे पाए परम पुलाया हर ना चेते सदा दुख पाए बिन हर चेते दुख पाए दा जे सतगुर सेवे सो प्रवान काया हंस निर्मल दर सच्चे जान हर सेवे हर मन मसाए सुखे हर गुण गाए दा बिन भागा गुर सेव्या ना जाए मनमुख फूले मोए बिल लाए जिन को नदर होवे गुर केरी हर जू आप मलाए दा काया कोट पके खटनाले गुरमुख लेवे वत समाले हर का नाम त्याए दिन राती उत्तम पदवी पाए दा आपे सच्चा है सुखदाता पूरे गुर के शब्द पछाता नानक नाम सला के साचा पूरे पाग को पाए दा मारू महला तीजा निरंकार आकार उपाया माया मोह बनाया आपे खेल करे सब करता तू साचा मानव साए दा माया माई त्रैगुण परसूत जमाया प्यारे वेद ब्रह्मे नू फुरमाया वरे महावार छिती कर ए जग में सोजी पाए दा गुरसेवा ते करनी सार आराम नाम राखो उर तार गुरबाणी वर्ती जग अंतर इस बाणी ते हर नाम पाए दा वेद पढ़े अंदनवाद समाले नाम ना चेते बद्दा जम काले दूजे पाए सदा दुख पाए त्रै गुण परम पुलाए दा गुरमुख एक स्यों लिव लाए त्रिवद मनसा मने समाए साचे शब्द सदा है मुक्ता माया मोह चुकाए दा जो तुर राते से हुन राते गुर प्रसादी सहजे माते सदगुर सेव सदा प्रापाया आपे आप मिलाए दा माया मोहे परमन पाए दूजे पाए लगा दुख पाए सूहा रंग दिन थोड़े होवे हे जांदे बिर मन लाए दा यो मन पाए पाए रंगाए
ਇਹ ਤਰੰਗ ਸਾਚੇ ਮਾਏ ਸਮਾਏ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਉਹ ਇਹੋ ਰੰਗ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਚੜਾਏ ਦਾ ਮਨਮੁਖ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਅਪਮਾਨ ਦਰਗੇ ਕਵੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮਾਨ ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਦਰ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘਰ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਇਆ

गुण में गुणी समाया, ए जग में मोह है पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हिरदे विसाई, कीमत कौन करे प्रा तेरी, तू आपे सहज समाया।

मेरी, बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है, जय जय कार्ज पो जगदीस, बल बल जाई प्रभ अपने ईस, इस बिन दूजा अवर न दीस, एका जगत सुबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सेमर सेमर जीवे जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सबे उदाहरण खसम हमारा, सिमर ना पुन्नी सा।

चक्र पान दर्श अनुपया सहस नेत्र मूर्त है सहसा एक दाता सब गये मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल गये साथे बादेव नरंजन दाते वर्ण सा को गुण अंगा मुकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण।

तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का। साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई। काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का। तुद बिन नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा। हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का। सास सास प्रा बिसरे नाही, आड़ पैर हर हर को त्याई। नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का। मारू महला पंजवां, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। चरण कमल हिरदे निधारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी। तान मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना। सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे सास सवारे। सास ग्रास समाले, करता कीता अपना पावना। जाते बिरता को नाही, आड़ पैर हर रख मन माही। साध संग पाच अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुख नौ निध। सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मिल साधु स्वामी रावणा। सात सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पुराणी। ताम क्रोध निंदा पर हरिये, हरसना नानक गावना। जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती। जो जो जपे सो ही वड़ भागी, बौड़ ना जो नी पावना। जिसनु बिसरे पुरख बेदाता, जलता फिरे रहे निताता। अकिरत कणे को रखे ना कोई, नरक कोर में पावना। जियो प्राण तन तन जिन साजया, माद गर्भ में रख निवाजया। तेस्यो प्रीत शाट अनराता, काहू सिरे ना लावना। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, कड़कड़ वसे सबन के नेरे। हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जनाए तिसे जनामना। जाके मस्तक तुर लिख पाया, तेसी पुरख न व्यापे माया। नानक दास सदा सरणाई, दूसर रवे ना लावना। आग्या दूसू सब कीने, अमृत नाम बिरले ही चीने। ताकि कीमत कहण न जाई, जरकत ओई समावना। तोई भगत सोई वड़दाता, तोई पूर्ण पुरख बेधाता। बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना। मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदे कटे ना कटाए। सोई हुए जे करते पावे, कह के आव न्यामना। अंध कूबते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कृपा तारखे कर अपने, मेरे साधु गोविंद त्यामना। तेरी कीमत कहण न जाई, अचरत रूप वड्डी वड्याई। भगत दान मंगे जन तेरा, नानक बल बल जामना। मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पहला, वेण गाहक गुण वेतिए। तौ गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले। तौ गुण लाख वकाए, गुण ते गुण मिल पाईए। जे सतगुर माए सुमाए, मोल अमोल ना पाईए। वणज ना लीजे हाट, नानक पूरा तोल है। कहो ना होवे काट, महला चौथा। ना विहूने परम से, आवे जावे नीत। एक बंद एक टीलिया, एक सुगी हर प्रीत। नानक सच्चा मन लय, सच करनी सच रीत। पौड़ी गुरते ज्ञान पाया, अद खड़ग करारा। दूजा प्रमगढ़ कटिया, मोलोभ अहंकारा। हर का नाम मन वसया, गुर शब्द विचारा। सच संजम मत कूतमा, हर लगा प्यारा। सब सचो सच वर्तदा, सच सृजनहारा। सलोक महला तीजा, केदारा रागा विच जानिए पाई। सबदे करे प्यार, सत्संग सो मिलदो रहे। सच्चे तरे प्यार, विचो मल कटे अपनी। कुलां का करे उधार, गुणा की रास संग्रह। अवगुण कढे विडार, नानक मिलिया सो जानिए। गुरु ना छोड़े अपना, दूजे ना तरे प्यार। महला चौथा, सागर देखो डर मरो, पै तेरे डर नाहे। गुर के सब संतो किया,
ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਤਾਨ ਆਏ ਮੁਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੜ ਬੋਏ ਥੇ ਚਾਲ ਸੋ ਸਾਗਰ ਲਹਿਰੀ ਦੇ, ਠਾਕ ਨਾ ਸੱਚੇ ਬੋਏ ਥੇ ਜੇ ਗੁਰ ਤੀਰਕ ਦੇ, ਤੇਦਰ ਜਾਏ ਉਤਾਰੀਆ ਗੁਰ ਦਿਸੇ ਸਾਵਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ ਦਰਗੇ ਚੱਲੇ ਮਾਨ, ਪੌੜੀ ਨੇ ਕੰਟਕ ਰਾਜ ਪੁੰਚ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਈ, ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਨਿਆਉ ਕਰ ਸਤਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ, ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਜਾਪਣਾ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੇ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ, ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੀ ਗੁਰਸੋਜੀ ਪਾਈ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਲੀ ਪੂਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰੀ, ਪਾਦਰ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆ, ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਮੇਰਾ ਕੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸੇ, ਸਾਜਨ ਉਤਹੀ ਠਾਏ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੀਏ।

जे गुण होवन ता पिर रवे, नानक अवगुण मुंद महला पहला, साज सील सा संजमी सा पूरी परवार, नानक ऐन सदा भली फिर कह गेत प्यार पौड़ी, अपना आप पछाणिया नाम दान पाया, कृपा करके अपनी गुर शब्द मिलाया, गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया, हर चिनी चाखिया हंस ठाकर खाया, हर पी सदा तृप्त भये तृप्त न भुख गवाया। श्लोक महला तीजा।

मंगिए सो दर सेवे हो ना कोए, ऐसा सदगुर लोड़ लहो जे जेवड़ अवर ना कोए, ते शरणाई छूटिए लेखा मंगे ना कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिरदे सच है तन मन पी सच्चा होए, नानक सच्चे हो मन्ने है।

मरे दुख पावे, अंधे आपना पछाणनी, दूजे पज जावे, आत क्रोसो लूज दे, अगे पिछे दुख पावे, हर जियो अहंकार ना पावई, वेद कूप सुनावे, अहंकार मोए से।

जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर भेटे सोए पौड़ी दोवे तरफा उपाई होन विच सगत से वस सगती किने ना पायो फेर जन्म बेनासा गुर सेवे सांत पाई है जप सास गिरासा सिमरत सास्त सोध देख

वाचनी सुखी हूं सुखसार। सो ब्राह्मण पला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार, हर साल आगे हर पड़े गुर के शब्द विचार। आया ओ प्रवान है जे कुल का करे उधार, अगे जात ना पुछिए करनी शब्द है सार। और कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार, अंदर सुख ना हो वई मानमुख जन्म खुवार। नानक नाम रते से उबरे गुर के हेत अपार, पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा। जो हुक्म ना बूझे खसम का सोई नर कच्चा, जित पावे तित लाएदा गुरमुख हर सच्चा। सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा, गुरमुख सदा सलाई है सब तिरदे जचा। जो नानक आप नचाएंदा तिव ही को नचा सुध। मारू वार महला पंजवा दखणे महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। तू चौ सज्जन मैंडिया देई सिस उतार, नैण महिंजे तरस दे कद पसी दीदार। महला पंजवा निहु महिंजा तऊ नाल ब्याने कूड़ा वे देख, कपड़ पौ डरावणे जिचर प्री ना देख। महला पंजवा उठी चालू कंतड़े हो पसी तो दीदार, काजल हार तंबोल रस बिन पसे हाबरा शार। पौड़ी तू सच्चा साहेब सच, सच सब तारिया गुरमुख की तो थाट। सिरज संसारिया हर आग्या होए बेद, पाप पुन विचारिया ब्रह्मा विष्ण महेश। त्रैगुण विस्तारिया नौखण पृथ्वी साज, हर रंग सवारिया वेकी जंत्यो पाए अंतर कल तारिया। तेरा अंत न जाने कोय सच सिरजन हारिया, तू जाने सब विद आप गुरमुख निस्तारिया। दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा एक भोरी ना वे छोड़, जियो महिंजा तौ मोया कद पस्ती जानी तोह। महला पंजवा दुर्जन तू जल पाड़ी विछोड़े मर जाहे, कंता तू सौ से जड़ी मैंडा हब्बो दुख।

कीमत कहे कौन, तो सृजा सब संसार तू नायक सगल पौन, तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल राउन, तू अपड़ कोई ना सके तू उबनासी जग उदरण, तू थापे चारे जुग तू करता सगल तरण, तुद आमन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रेण, जिस होवे आप दयाल तिस लाभ है सदगुर चरण, तू होर उपाय ना लभगी अवनासी सिष्ट करण, दखणे मुहला पंजवा जे तू वत्ते अंगणे अब तरत सुहावी होए, एक सकंते भारी मैंडी वात ना पुछे कोए, मुहला पंजवा अबे टोल सुहावणे सो बैठा अंगण मल, पाई ना वञे बिरथड़ा जो कर आवे चल, मुहला पंजवा सेज विशाई कंत कू किया हब सीगार, इती मंझ ना सुमावई जेगल पैरा हार, पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेसर जोन ना आवगी, तू हुक्मी साजे सृष्ट साज सुमावगी, तेरा रूप न जाई लखया क्यों तुझे ते आवगी, तू सब मैं वरते आप कुदरत देखावगी, तेरी पगत परे पंडार तोट न आवगी, एहे रतन जवेहर लाल कीम ना पावगी, जिस होवे आप दयाल तेस सदगुर सेवा लाभगी, कदे न आवे तोट जो हर गुण गावगी, दखणे मुहला पंजवा जाम पसी हठ मैं, पिरी बिहिंजे नाल हब्बे डुख

पसंदो हरियो थी ओस महला पंजवा मेरी मेरी क्या करे पुत्र कलत्र स्नेह नानक नाम विहूणिया ने मुनिया दी देखे पौड़ी नैनी देखो गुर दर्शनो गुर चरणी मत पैरी मार्ग गुर चलदा पखा फेरी हथ अकाल मूर्त हृदय त्याएदा दिन रहन जपंत मैं छड़िया सगल अपायनो प्रवासे गुर समर्थ गुर बख्शिया नाम निदान सबो दुख लथ भोगो पुंचो पाई हो पल्ले नाम अगत नाम दान इस नान देड़ सदा करो गुर कथा।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे, नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर तलोचन, सदना सहन तरे, तै रविदास सुनो रे संतो, हर जी उते सवै सरे, मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते भजा के रे, चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तलता के, हर गा हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माही, व्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनाही, सहज समाध उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी, तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहमा देसो तू पला, हर जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा, प्रेबाज दुखेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा, रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले सातन, तू सुन आत्म रामा, बाबी गा प्रयो बोले, कोकल बाणिया सातन सबरस चोले, अंक समाणिया हर अंक समाणी जा प्रा पाणी, सास हुआ नारे, नव कर थाप मैल कर ऊचो, निज कर वास मुरारे, सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निस बसर रंग रावे, नानक प्रयो प्रोचवे बवीह, कोकल शब्द सुहावे, तू सुन हरस पिन्ने, प्रीतम अपने मन तन रव तरवन्ने, कड़ी ना बिसरे, क्यों कड़ी बिसारी हो बलिहारी, हौ जीवा गुण गाए, ना कोई मेरा हो किस केरा, हार बिन रहन ना जाए, ओड़ गई हर चरण निवासे, पाए पवित्र शरीरा, नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावे, गुरसबदी मन तीरा, बसे अमृत तार, बूंद सुहावनी, साजिन मिले सहज सुपाए, हर स्यों प्रीत बनी, हर मंदर आवे जा प्रभावे, तन ऊबी गुण सारी, तार कर कंतर वे सुहागन, हों क्यों कंतव सारी, उन कन शाए बरस सुपाए, मन तन प्रेम सुखावे, नानक वरसे अमृत बाणी, कर कृपा कर आवे, चेत बसंत फला पावर सुहावड़े, बन फूले मंज बार, मैं फिर कर बहौड़े, फिर कर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे, बिरे ब्रो तन छीजे, कोकल अंब सुहावी बोले, क्यों दुख अंक सहीजे, पावर भवंता फूली डाली, क्यों जीवा मरमाए, नानक चेत सहज सुख पावे, जे हर वर कर तन पाए, वैसाख भला साखा वेस करे, तन देखे घर द्वार, आव हो दया करे, कर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुद बिन अड ना मोलो, कीमत कौन करे तुद पावा, देख दिखावे ठोलो, दूर न जाना अंतर माना, हरका महल पछाना, नानक वैसा की प्रपावे, सुरत शब्द मन माना, माहो जेड़ पला प्रीतव क्यों बिसरे, थल तापे सर पार, सातन बिनो करे, तन बिनो करेंदी गुण सारेंदी, गुण सारी प्रपाव, साचे महल रहे बैरागी, आवन देता आवा, निमाणी नितानी हर बिन, क्यों पावे सुख महली, नानक जिड़ जाने थी जैसी, कर्म मिले गुण गैली,

जन्ते उपाय नित देवे चढ़े सुवाया अपरंपरे आपे था पुतापे इस पावे सो होवे नानक हीरा हीरे विद्या गुण कै हार परोवे गुण गुणे समान मस्तक नाम निशानु हसा समाया चूका आमन जानु सच साच पछ।

अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हौ सतगुर कै बलिहारिये सतगुर आगे सीस पेट देओ जे सतगुर साचे पावे आपे दया करो प्रदाते नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरम

पंजवां तार पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाहे मन ते हरी आबे प्रीत महा प्रबल पई आन विखे जरी रघाओ बूंद का त्याग चातरक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उच्चा रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रचरण कमल रसाल नानक गांठ बांध थरी केदारा महला पनवा प्रीतम वस्त्रित।

राखो रहे अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे, क्या को करे परानी, जत पावे सतगुर पेट, एको नाम बखानी। बलुआ के करुआ में बसते फुलवत दे अयाने, कौ कबीर जे राम न चेते हो, बूढ़े बहुत सयाने।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ। तन में काम क्रोध हो ममता, कठिन पीर अद फारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, शब्द सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरो महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे, तुचा दे कुमलानी, नेत्री तुंद करन पै बैरे, मनमुख नाम न जानी,

मुन केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निरकर वासा पाया, पूरे सदगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिसन रुद्र उपाया, नानक नेचल साचा एकु ना ओ मरे ना जाया। पैरो मोहल्ला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे गुर सबदी विचारा। हर जियो

खड़ग कर ताया आत अंकार हर तेरा कहां तुझ लय उबार खिन मैं भयान रूप निक्षा थम उपाड़ हरणागस नहीं बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे गुर के शब्द होमे बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे

अरहो अराम रसायन नित उड़ पीवो हार घर हार घर रसना कहो अरहाओ कल युग में एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार भयो महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पाए जन्म जन्म की मैल मिटाए।

है। गुरमुख भेद विरला को लहे रहाओ, निकट ना देखे पार गृह जाए, दर्द हे रहे मिथ्या कर खाए, पई ठगौरी हर संग न जाने।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, ना बिना साध सड़गी चूरे।

का स्वाव नाम न विसरे संत प्रसाद, नाम लय अनहद पूरे नाद, प्रभु कृपा ते नाम नव निध पाई, गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई, तनवंते से ही प्रधान

ते सरणा इस दा सुख होए, पर कृपा जाको मिले सोए रहाओ, जाके करतब लखे ना जाहे, जाका परवासा सब कड़माहे, भगत भया साधु के संग, भगत आराधे अंदन रंग, देंदे टूट नही पंडार, खिर में थाप्यो थापन हार, जाग हुक्म ना मिटे कोए, से पास सहा साचा सोए, जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमारा तिसकी पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, भैरो महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन कहो संबंध चित आया, बूझ बहरा करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, बिखिया का सब तंद पसार।

परवासा सगल त्याव है प्रभु गुणतासा जब जब अंध करे तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा भैरों महला पंजवां।

निमखना छोड़ सदगी साथ हर सा प्रीतम अवर ना कोय सार संभाले साचा सोए माल पिता सुत बंद नारायण आदि जुगाद भगत गुण गायन।

पार ब्रह्म का निवास, तिद गुर कौ सत करी नमस्कार, तिद गुर कौ सत जाओ बलिहार, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाओ विर माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाओ मेरे बंधपना।

आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना अरहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे जब की स्यार

कंत अर्ध उर्ध मुगला गोकास ठुंड मंडल में कर परगास ऊगा सूरज नाही चंद आद निरंजन करे आनंद सो ब्रह्मंड पिंड सुजान मान सरोवर कर स्नान सो हं

विद्या कोट सबे गुण कहे, तउ पार ब्रह्म का अंत न लहे, बावन कोट जाके रूमावली, रामन सेना जयते शली, सहज कोट भो करत पुराण, दुर्योधन का मथिया मान, कंदर्व कोट जाके लवे न तरह, अंतर अंतर मनसा हरे, कह कबीर सुन सार्ग पान, दे अपय पद मांगो दान, भैरो बाणी नाम दियो जियो की कार पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

भगत जिना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखा बंद जल सेती काज, जैसी मूड़ कुट

पड़े नहीं, हम ही पचकारे। राम कह करताल बजावे, चटिया सबे बिगारे। राम नामा जपबू करे, हृदय हर जी को सिमरन।

पाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा घर करता रहे साल घड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजायला गरड़ चढ़े गोविंद आयला आपने।

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेवरांगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ पागे, पौन

पूरे सतगुर दिया बुझाए, दासां का दास विरला कोई होए, उत्तम पदवी पावे सोए, अरहाओ एक को सेव हो अवर न कोए, जित सेवे सदा सुख होए, ना ओ मरे न आवे जाए, तिस बिन अवर सेवी क्यों माए, थे जन साचे जिनी साच पछाणिया, आप मार सहजे नाम समाणिया, गुरमुख नाम प्राप्त होए, मन निर्मल निर्मल सस होए, जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान, साज शब्द प्रभ एक संयान, हर चाखे ता शुद्ध होए, नानक नाम रते सच सोए, बसंत महला तीजा, नाम रते कुला का करे उधार, साची बाणी नाम प्यार, मनमुख भूले काहे आए, नामो भूले जन्म गवाए, जीवित मरे मर मरण सवारे, गुर के शब्द साज उरतारे, अरहाओ गुरमुख सज भोजन।

राम नाम रस रहे अघाए, कोड कुटंत्र के पाप जल जाहे। जीव तुमरे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने। गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ। भगवे वेश प्रा मुक्त न होए, बहु संजम संत न पावे कोए। गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए।

अरहाओ गुर प्रसाद लागे नाम स्वाद काहे जन्म गवाब हो वैरवाद पुर कृपा कीनी चूका अवमान सहज पाए पाया अगर नाम उत्तम ऊंचा शब्द काम नानक वखाणे साच नाम बसंत महला तीजा बनसत मौली चढ़िया बसंत यो मन मोल्या सतगुरु संग तुम साज त्यावो मुद मना ता सुख पावो मेरे मना अरहाओ एत मन मौल्य पया आनंद अमृत फल पाया नाम गोविंद एक को एक तब आख बखाने हुक्मे बूझे ता

मुंह सत्संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हारस पुंज रहाओ सत्संगत साध दया कर मिल हो शरणागत साधु पंज हम डुबदे पाथर काढ़ लेहो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पंज हर उस्त तारो रिद अंतर स्वामी सत्संगत मिल बुद्ध लाइ हर नामे हम प्रीत लगानी हम हर विटों कुम वाइ जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देवो हर लाइ जन नानक मन तन अंध पया है गुर मंत्र दियो हर पंज बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सेव कर नमस्कार आज हमारे मंगल चार।

सुख हर कै नाय तिसे प्राप्त एहो निदान। नानक गुरज करे दान बसंत महला पंजवा तिस बसंत जे प्रभु किरपाल तिस बसंत

साधु संगत गुरे बताई ऊहा जपिए केवल नाम। साधु संगत पार ग्राम सगल तत् में तत् ज्ञान, सर्व ध्यान में एक ध्यान, हर कीर्तन में उत्तम तुना। नानक गुरमिल गाए गुना बसंत महला पंजवा, जिस बोलत

दान तेरिया संत जिना की बाशो तूर। जप नानक स्वामी सद हजूर, बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा। गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रखवाले माई बाप, जाके सिमरन नहीं संताप खसम त्याई एक।

माया सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जब जीवे नानक राम नाम, सारुत सुहावी जित हर चित आवे, बिन सतगुर दिसे बिललांती सागत, फिर आवे जावे रगाओ, से तनवंत जिन हर प्रवरास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पै बिन से निरपय पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया, साध संगत प्रभ कियो लिवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जलथा

सात सहज गृह सद बसंत गुरपूरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर घर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रवे आप गुर अपने को नित नित जाप।

तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुद भावे जिसनु तू रंग धरता, तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा। तू समर्थ स्वामी मेरा हौ क्या जाना तेरी पूजा, तेरा मैल अगोचर मेरे प्यारे विघम तेरा है पाना। कहो नानक तय पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना, बसंत हिंडोल महला पंजवा मूल ना बूझे आप ना सूझे,

कज बिगड़ो नाहन अज हो जाग रहाओ सब सुपने कह यो जग जान बिन से शिन में साची मान संग तेरे हर बस्तनीत निज बासर पजताहे मीत बार अंत की होए सहाए कहो नानक गुणता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां कार पहला दो तुकियां एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

ना पण सज दोत सवार प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला पहला मन पुल्लो परमस आए जाए अत लुद लुबानो बिखमाय न अस्थिर दिसे एक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन पुल्लो समझ साच नाए गुरु शब्द विचारे सहज पाए रहाओ मन पुल्लो परमस पावरतार बिल बिरथे चाहे बहु विकार मैग जो फासस कामहार कड़बंधन बाध्यो शीस मार मन मुग्धो दादर भगतहीन दर पलट सरापी नाम बीन ताके जात न पाती नाम लीन तब दुख सुखाई गुणे बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हरस राखे पत न साख तू आपे सुरता आप राख हर तारण देखे जाने आप आप पुराए किस कहो जाए गुर मिले बिरथा कहो माए अब गुण छोड़ो गुण कमाए गुर शब्दी राता सच समाए सदगुर मिले मत उत्तम होए मन निर्मल हो मैं कड्डे तोए सदा मुक्त बंद ना सके कोए सदा नाम खाने और ना कोए मन हर के पाने आवे जाए सब में एको केश पहन न जाए सबको वर्ते हुक्म सुमाए दूसू सब तिसर जाए तू अपुल ना पुलो कदे नाहे गुर शब्द सुनाए मत अगाहे तू मोटो ठाकुर शब्द माहे मन नानक मानिया सच सलाहे

तै लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना बिचारे कोए। एबद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा अनक जन्म प्रमे जोन माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड, गोविंद पजो।

दुख सुख बंध हो संसार मन उदरण का साज नाहे पाबंदन नित पौत जागे ईठ मीत को सखा नाहे आ बीज आपे ही खावे जाके कीने होत बेकार ते छोड़ चलिया खिण मैं गवार माया मोह मोह भरमिया किरतरे कर करमिया करने हा

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माघ जहां जाएगे तय जल पखान तू पूर रहोग।

जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया तिनके काज सवारे रखाओ, जो जन दीन पए गुर आगे तिनके दुख निवारे, अन दिन भगत करे गुर आगे गुर के शब्द सवारे, हिरदे नाम अमृत रस रसना रस गावे रस बिचारे, गुर प्रसाद अमृत रस जीनिया कोई पावे मोह द्वारे, सदगुर पुरख अचल अचला मत जे दृढ़ता नाम आधारे, तिस आगे जीओ देवो अपना हौ सदगुर कै बलिहारे, मनमुख भ्रम दूजे पाए लागे अंतर अज्ञान गुबारे, सदगुर दाता नदर न आवे ना उरवार न पारे, सर्वे घट घट रविया स्वामी सर्व कला कल तारे, नानक दासन दास कहत है कर कृपा लिहो उबारे, सारग मोहल्ला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाए, जुगज करे सो सदकर मानो गुरमुख नाम रहो लिवलाए रगाओ, गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाए, आन दिन रहस पया मन मानिया ज्योति ज्योत मिलाए, जब गुण गाए तब ही मन तृप्त है सांत वसे मन आए, गुर कृपाल पहेता पाया हर चरणी चित लाए, मत प्रगास पई हर त्याया ज्ञान तत् लिवलाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया हर सहज समाध लगाए, हिरदे कपट निरकपट कमावे मुखों हर हर सुनाए, अंतर लोभ महागुबारा तो कूटे दुख खाए, जब सो

मेरा मन राम नाम मन मानी, मेरे हीरे सदगुरु प्रीत लगाई, मन हर हर कथा सुखानी रघाओ, दीन दयाल हो भोजन ऊपर, जन देव हो अकथ कहानी, संत से नाम मिल सारस पाया, हर मन तन मीठ लगानी, हर के रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी, पुरखे पुरख मिलया सुख पाया, सौ चूकी आमन जानी, नैनी बिरो देखा प्रस्वामी, रसना नाम वखानी, श्रवणी कीर्तन सुनो दिन राती, हिरदे हर घर पानी, पंच जना गुर वसगत आने, तो उन मन नाम लगानी, जन नानक हर कृपा तारी, हर रामे नाम समानी, सारग महला चौथा, जप मन राम नाम पढ़ सार, राम नाम बिन थिर नहीं कोई, और नेपल सब विस्तार रहाओ, क्या लीजे क्या तजिए बौरे, जो दिसे सोशार, जिस बेख्या को तुम अपनी कर जानो, ता छाड़ जाओ सिर पार, तेल तेल पल पल औद फुन घट, बूझ न सके गवार, जो कुछ करे जे साथ न चाले, तो सागत का आचार, संत जना के संग मिल बौरे, तो पावे मोख द्वार, बिन सत्संग सुख किने ना पाया, जाए पूछो वेद विचार, राणा राव सबे को चाले।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी। जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान। सासृड का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी। जन नानक नाम लए ता जीव है, ज्यो चातक जल पीए त्रिवतासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम। बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ। राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सत जगे। जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे। राम नाम की उपमा देखो हर संतो, जो भक्त जिना की पत राखे। वेत कलयुग अगे जन नानक का अंग किया, मेरे राम राय दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यो जल की। सबल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक। भगत वशिल हर नाओ, जाको कोई ना राखे प्राणी। तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत। निथाव्या तू थाओ, दैज जाओ ता तू संगे। तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक स्ते लाख लाख।

दीजे साध संगत कृपानंद, नानक पूर रहो गए सर्ब में, सगल गुणा विद जानद, तारग मोहल्ला पंजवा, आप मोहे आराम परो सो पाए, जो जो शरण परो करना निध, ते ते पवे तराए रखाओ, सुख सोयो अर सहज सुमायो, सहसा गुरे गवाए, जो चाहत तोई हर कियो, मान बांचित फल पाए, हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो, त्रवणी कथा सुनाए, चरणी चलो मार्ग ठाकुर के, रसना हर गुण गाए, देख्यो दृष्ट सर्व मंगल रूप, उल्टी संत कराए, पायो लाल अमोल नाम घर, तोड़ न कतहु जाए, तम उपमा कौन बढ़ाई, क्या गुण कौरी जाए, होद कृपाल दीन दयाल प्रभ, जन नानक दास दिसाए।

ठाकुर दे प्रगास पयो हर ओआ की कही न जाए कहावत आन उपाव जे ते किश कही है ते ते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रे पीतर प्रट्यो अगम जैसे प्रखावत निर्गुण निरंकार अविनाशी अतुलो तुल्यो न जावत कहो नानक अजर जिन जरिया किसी को बन आवत सार्ग महला पंजवा बिखई दिन रैन ए भी गुदारे गोविंद न भजे अंग बुद्ध माता जन्म जुए ज्यो हारे हरहाओ नाम अमोला प्रीत न तिस्यों पर निंदा हित कारे छापर बांस वारे तिनको द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन ते डारे ओढे बस्तर काजर में परिया बौर बौर फिर चारे काटे पेड़ डाल पर ठंड हो खाए खाए मुस्कारे गिरो जायर सातल परयो छिटी छिटी सिर पारे निर्वैर संग वैर चाय पहुंच न सके गुवारे कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार सार्ग महला पंजवा अवरसा भूले प्रमत न जानिया एक सुधाखर जाके हिरदे वसया तिन बेदे तत् पछानिया रखाओ प्रविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग बचारा जौल उड़दे नहीं पर गासा तौलो अंध अंधारा जैसे धरती साधे बहुबिद बिन बीजे नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त न होई गए टूटे नहीं अब माने नीर बलोवे आत श्रम पावे नैनू कैसे रीसे बिन गुर पेटे मुक्त न काहू मिलत नहीं जगदीश खोजत खोजत ए बिचार्यो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक पयो प्राप्त जाके लेख मथामा सार्ग महला पंजवा अन दिन राम के गुण कहिए सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बाशत फल लहिए रघाओ आओ संत प्राण सुख दाते सिमरे प्रभ अविनाशी अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो कटवासी गावत सुनत सुमावत सरदा हर्ष पी वड पागे कल कलेश मिटे सब तन ते आराम नाम लिव जागे काम क्रोध चूड़त निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अंग अन ममता गुर कृपा ते छूटे तू समर्थ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूरे ओ सर्व में ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा सार्ग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जाके संग पार ब्रह्म त्याईए उपदेश हमारी गत करन अरहाओ दुख रोग पै सगल बिनासे जो आवे हर संत सरन आप जपे अवरहे नाम जपावे वट समरथ तारन तरन जाको मंत्र उतारे सहसा ऊने को सुबर परन हर दासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कुमावत गावत दो काटे ताके जन्म मरन जा को पयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर से अगाने तेज सुमाने मुक्ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जाप उदरन सार्ग महला पंजवा गायो री मैं गुण मंगल गायो पले संजोग पले दिन अवसर जौ गोपाल री जायो अरहाओ संत चरण मोरलो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा साधे मंत्र मोरलो मनुआ ताते गत होए त्रै गुनिया भगते दर्श

मार्ग चले तिनी सुख पाया, जिन से गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में, ते साधु संग पार परे, जिनके पाग बड़े हैं पाई, तिन साधु संग

साध समागम कोड बैकुंठे पाए रघाव दुलाभ दे जब होत पुनीता जम की त्रास निवार महापत्ते पातक उतरे हर नामा उर तारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई गे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जो दरिया मान करो अब महाने बोलो पूल चूक तेरी प्रेत्रिया रखाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पनवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहे दे नाओ बलिहारी रखाओ चौ दिस फूल रही बिखिया बिख गुर मंत्र मूख गरड़ारी आ दे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाओ नाही किश मैं क्या हुसा तब तुम ही कल तारी नानक पाग प्रयोगर पाछे राग संत सदकारी सारग महला पंजवा आप मोहे सर्प पा बिरकाते करण कारण समरत स्वामी हर एक स्ते मेरी गाते रघाओ देखे नाना रूप हो रंगा अनना ही तुम पाते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रम तो हार जो परे हो तो गुरमिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेगा नहीं राते सारग महला पंजवा अब मोहे लभ देव है घर टेका गुरदयाल पय सुखदाई अंधले मानक देखा रघाओ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध विगास बवेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेव कु ठाकुर पय एका जय ते उठ्यो तय ही आयो सभी एक एका नानक दृष्ट आयो सब ठाई प्राण पति घर समका सारग महला पंजवा मेरा मान एक ही प्रेम मांगे आयो सब थान देश प्रे रोम न समसर लाग रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन पेसो दृष्ट न करे रुचांग हरस चाहे प्रे प्रेम कुटेर ज्यो आल कमला लोभांग गुण निधान मनमोहन लालन सुखदाई सरबांग गुरु नानक प्रापाए पठायो मिलो सखा गल लागे सारग महला पंजवा आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दयाल पय है यो छेद्यो दुष्ट बिगाना रखाओ तुम ही सुंदर तुम सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोर अर ज्ञान त्या

गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रगाओ गुरबचनात कृपाद कृपा ते बौर नकत हूं तायो रेत उपाद समासु आसन भगत वशल ग्रे पायो नाल विनोद कोड़ आनंदा सहज सहज समायो करना आप करामन आपे कौ नानक आप आयो सारग महला पंजवा अमृत नाम मने आधारो जिन दिया तिसके कुर्बाने गुरपुरे नमस्कारो रगाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए न जाए बसे जे ठार जे आसन रंकारो एके प्रगट एके गुप्ता एके तुंदुकारो आद मद अंत प्रसोई को नानक साज विचारो सारग महला पंजवा बेन प्रभ रहन न जाए करी सर्व सुख ताहू के पूर्ण जाके सुख हरि रघाओ मंगल रूप प्राण जीवन तन सिमरत अंध कना वड समर्थ सदा ससंगे गुण रसना कमल पना थान पवित्रा मान पवित्रा

चोरी आंध कूप में पतत होत जग संत हो करो परम गद मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

निर्वैर संग वैर रचावे हर दरगे ओहारे आद जुगात प्रभु की वड्याई जन की पैज सवारे निरपो पय सगल पो मिटिया चरण कमल आधारे गुर के बचन जप्यो नाओ नानक प्रगट पयो संसार सारग मुहला पंजवा हर जन छोड़िया सगला आप ज्यों जानो त्यों रखो गुसाई पेख जीवा प्रताप रखाओ गुर उपदेश साध की संगत बिन स्यो सगल संताप मित्र सत्तर पेख समत बीचार्यो सगल संपाखन जाप तप्त बुझी शीतल आगाने सुन अनहद।

कलेश त्रास सब नस साध संग हित लावे रघाव हर घर मन आराधे रसना हर जस गावे तज अवमान काम क्रुद निंदा बास देव रंग लावे दामोदर दयाल आराध हो

रघाव जाके सूद परो ए जनता किस प्रभु का जस गाव हो सिमर ठाकुर जिन सब कुछ दीना आन कहां पे जाओ सफल सेवा स्वामी मेरे की मन बांझ।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूबते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिलाया, सारग महला पंजवां, हर के नाम की गद छांडी, वेद पुराण सिमर साधु जन, खोजत खोजत कांडी रहाओ, शिव ब्रंच अर इंद्र लोक, तामे जल तो फिरिया, सिमर सिमर स्वामी पैसी तल, दुख दर्द प्रभ गिरिया, जो जो तरयो पुरातन नवतन, भगत पाए हर देवा, नानक की बेनंती प्रभ जियो, मिले संत जन सेवा, सारग महला पंजवां, जेवे अमृत गुण हर गाओ, हर हर बोल कथा सुन हर की, उचरो प्रभु को नाओ रगाओ, राम नाम रतन तन संचो, मन तन लाभो पावो, आन विभूत मिथ्या कर मानो, साचा ए सुवाओ, जी प्राण मुक्त को दाता, एक स्यों लिव लाओ, कहो नानक ताकी सरनाई, देत सगल अपियाओ, सारग महला पंजवां, होती नहीं कमन कछ करनी, ए ओढ़ पाई मिल संत, गोपाल एक की सरणी रगाओ, पांच दोख शिद्र या तरम है, बिखे ब्याध की करनी, आस अपार दिनस गण राखे, ग्रस्त जात बल जरणी, अनाथे नाथ दयाल सुख सागर, सर्व दुख पय हरणी, मन बांछित चितवत नानक दास।

समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लहो हर दे आराधो छुटके आमन जानी उदम

छोड़ो कपट होए निरवैरा तो प्रभ संग निहारे सचतन वंजो सचतन संचो कबू न आवो हारे खात खर्चत किश निखुटत नाही अगन

सेव करत अनसेवा बिरथा काटे काल। जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल। राख ले हो दास अपने कहो सदा सदा कृपाल। सुख निदान नान प्रा मेरा साध संग तन माल। सारग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रगाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रखाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान, जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम। जाके हृदय वसे पए भंजन, ते जाने सगल जहान। खेन पल बिसर नहीं मेरे करते, तो नानक मांगे दान। सार्ग मोहल्ला पंजवा, बूठा सर्वथा ही में हो। अनंद मंगल गाओ हर जस, पूर्ण प्रट्यो ने हो रहाओ। प्यार कुंट दह दिस जल निध, ऊन थाओ ना के हो। कृपा निध गोविंद पूर्ण, जी दान सब देहो। सत सत हर सत स्वामी, सत सा संगे हो। सत तेजन जिन प्रतीत उपजी, नानक नह परमे हो। सार्ग मोहल्ला पंजवा, गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार। ताजन मीत सहार।

मोह मद मातो सिमरत ना गे हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन विद्या कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान ए बाणी रसना पाखी। जप राम नाम

मोहे मोहे ली प्रे प्रीत रिदे मेल सरबरी प्रीत दयार प्रसदारी दयार काए आन आन रुचिए हर संग संग खचिए जो साध संग पाए कौ नानक हर ते आए अब रहे जमे मेल सारग मोहल्ला पंजवा कंचना बो दत करा पूम दान अर्प तरा मन अनक सोच पवित्र करत ना हीरे नाम तुल मन चरण कमल लागे रघाओ चार वेद जेब पने

अपनी पाई, बिरसे प्रम्भो अंध, टूटे माया के बंद, पूर्ण सर्वत्र ठाकुर न को बैराई, स्वामी सो प्रसन्न पए, जन्म मरण दुख गए, संतन के चरण लाग, नानक गुण गाई, सार्ग महला पंजवां, हर हरे हर मुखो बोल, हर हरे मन धारे रहाओ, श्रवण सुनन भगत करन, अनक पातक पुने चरण, सरन परन साधु आन बान विसारे, हर चरण प्रीत नीत नीत, पावनामे महापुनीत, सेवक पहे दूर करन, कर्म दुख जारे, तहेत मुक्त सुनत मुक्त, रहत जन्म रहते।

सके सुपनो देख कहां लोभ आवे। जो उपजे सो सगल विनाश रहन न को उपावे। मिथ्या तान साचो कर मान्यो

नानक से जन थाए पाए गए, जिनकी पद पावे लेखे। सारग महला पंजवां, अष्टपदियां कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुसाई प्रताप तुहारो डीठा। करन करावन उपाय समावन, सगल छत्रपद बीठा रगाओ। राणा राव राज पै रंका, उन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत, ताको सगल कटां जस गायो। उपमा सुनो राजन की संतो, कैद जेद पाहुचा। बेसुमार वर्षा दा तारा, ऊचे ही ते ऊचा। पावन परोयो सगल कारा, पावक काष्ट संगे। नीर तरण कर राखे एकत, कोई न किस ही संगे। धड़कड़ कथा राजन की चल है, कर कर तुझे उमाहा। जी जंस पाछे करया, प्रथम रिजक समाहा। जो कुछ करना तू आपे करना, मसलत काहू दीनी। आनक जिदन का करे दिखाए, साची साखी तीनी। हार भगतां का राखे अपनी, दीनी नाम डाई। जिन जिन करी अवग्या जन की, ते तै दिए रुड़ाई। मुक्त पए सा संगत कर, तिनके अवगुण सब परखरिया। तिनको देख पए कृपाला, तिन पवसागर तरिया। हम नाने नीच तुम्हें बड़ साहेब, कुदरत कौन बिचारा। मन तन शीतल गुरदर्श देखे, नानक नाम आधारा। सारग महला पंजवां, अष्टपदी कर छेवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आगम अगाध सुनो जन कथा। पार ब्रह्म की अचरज सभा रखाओ, सदा सदा सतगुर नमस्कार। गुर कृपा ते गुण गाए अपार, मन पीतर होवे परगास। ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश, मित नाही जाका विस्तार। सोबाता की अपर अपार, अनक रंग जाके गने ना जागे। सोग हरख दोहु मैं नागे, अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करे। अनक महेश बैस ध्यान करे, अनक पुरख

ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपय का दाता कड़ कर पूर्ण गए अलपाता कड़ कर पूर्ण कर विस्तीर्ण जल तरंग ज्यों रजन किया हाव रसमाने पोक टाणे आनन बिया कोतिया हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रव जाता नाग दर्शलीना ज्यों

आधार नानक आप सदीव है। पूरा जिस पंडार वड्डा कर सालाही है। अंत न पारावार पौड़ी हर का नाम निधान है। सेवे सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पत स्यों कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई। मत पंखे रूवा

योगी का जत होए, ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान, राजे चुली न्याव की पढ़िया सच ध्यान, पानी चेतना तो पई मुख पीते तिख जाए, पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी, नाय सुने सब सिद्ध है रिद पिछे आवे, नाय सुने नौनद मिले मन चिंदिया पावे, नाय सुने संतोख होए कवला चरण त्यावे, नाय सुने सहज उपजे सहजे सुख पावे, गुरमति नाव पाईए नानक गुण गावे, श्लोक महला पहला दुख ज जमन दुख मरण, दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए, पढ़ पढ़ करे पुकार दुखियां पंडा खुलियां, सुख ना निकले हो कोए, दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए, नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए, दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए, महला पहला नानक दुनिया पस रंग पसु हू पस खेहे, पसो पस कमावनी पी पस परिये देहे, जा जियो विच्चों कड़िये पसु पर आ जाए, अगै लेखा मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी, नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे, नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे, नाए सुने आप बुझिए लाहा नाओ पावे, नाए सुने पाप कटिए निर्मल सच पावे, नानक नाए सुने मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे। श्लोक महला पहला कर नारायण सभा नाल

काम क्रोध तृष्णा उचर दसवीं दसे द्वार जे ठक एकासी एक कर जाने द्वादशी पंच वसगत का रख तो नानक मन मान ऐसा वर्तर ही जय पांडे और बहुत सिख क्या दी जय पौड़ी खूब तरा जे रंग राय संचय बिख माया कर कर हेत पधाए दे पर दर्व चुराया पुत्र कलत्र ना विस है बहु प्रीत लगाया वेख दिया ही माया तोए गई पछते पछताया।

सदगुरु सेवे सो सुख पाए, जिन होमे विचो मारी, नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है।

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरमुख जिन्हा शब्द मन वसे, दर गए मोह द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार।

पौड़ी, गुरपूरे की दात, नित देवे चढ़े सवाइया, तो देवे आप दयाल, ना छपे छपाइया, हिरदे कबल प्रगास, उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस, सिरशाई पाइया, नानक अपड़ कोई ना सकई, पूरे सदगुर की वड्याई है। श्लोक महला तीजा, अमर वे प्रवाह है, तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुजत करनी जाए, आव छोड़ सरनाए पवे, मन ले रजाए, गुरमुख जम डांडन लग गई, होमे विच्चों जाए, नानक सेवक सोई आखिए, जे सच रहे लिवलाए महला तीजा, दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियाणप होमे मेरी।

कहां नार गर्भस थोरी बात, मंद नाज टका चार गांठी, आइडो टेडो जात गाओ, बहुत प्रताप गांव सो पाए, दो लख टका बरात, दिस चार की करो साहिबी, जैसे बनघर पात, ना को ले आयो यो तन, ना को ले जात, रावण हूं ते अलक शत्र पा, हर के संत सदा सिर पूजो, जो हर नाम जपात, जिन को कृपा करत है गोविंद, ते सत्संग मिलात, मात पिता बंता सुद संपत, अंत न चलत संगात, कहत कबीर आराम पज बौरे जन

माया कारण श्रम अत करै, सो माया ले गाडे तरे, आत संचे समझे नहीं मूड, तान तरती तन हो गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना हो माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जानते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते तरंग तरंग ते है जाल, कहन सुन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिम मेरो निज रूप, दर्शन निमख तात्री मोचन, परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ, मेरी बंदी भगत छिड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गए बंद, तौ फुन मैं पो जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम परगास, सारंग एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, तय नर क्या पुराण सुन कीना, आन पावनी भगत नहीं उबजी, भूखे दान ना दीना रहाओ, काम ना बिसरयो, क्रोध ना बिसरयो, लोभ ना छूट्यो देवा, पर निंदा मुक्ति नहीं छूटी, निवर पई सब सेवा, बाट पार कर मूस बिरानो, पेड़ परे अपराधी, जे परलोक जाए अब कीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली, शाड़ मान हर विमुखन को संग, सारंग महला पंजवा सूरदास, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्वस सब अर्प्यो, अंध सहज तुन चोक रखाओ, दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए गए सगले थोक, आन बस त्यों काजना कछुए, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यो पुष्टी तन जोक, सूरदास मन प्रभत लीनो, दिनो यो परलोक, सारंग कबीर जियो, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, माल पिता पाई सुध बनता, हित लागो सब फन का, रहाओ आगे कौ किछ तुलखा बंद हो, क्या प्रवासा तन का, कां विसासा इस पांडे का, एत लग लागे ठनका, सागल तर्म पुन फल पाव हो, तू

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुर प्रसाद खाना पीना हसना सोना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिक जीवन नहीं रहना।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जेही रुत काया सुख तेह, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिरनावे रुत केही। मलार महला पहला।

मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागे साधे गर्स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी।

सके घड़कड़ रहे आ समाई एक बिन मैं अवर न जाना सतगुर दिया बुझाई मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता गुर के शब्द घर तिहाई रहाओ मन तन तीजे एक लिव लागे सहजे रहे समाई गुर प्रसादी प्रम पौ पागे एक नाम निवलाई गुर बचनी सचकार कमावे गत मत तब ही पाई कोड़ मध्य किसे भुजाए तिन राम नाम लिवलाई जय जय देखा तै एको सोई ए गुरमत बुद पाई मन तन प्राण तरी आगे

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुगद गवार, अनदन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लपटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हरस पीवे रसन रसाए, कोड़ मध्य किसे बुझाई, आपे बगसते देव डियाई, जो तुर मिलिया तो विछड़ ना जाई, नानक हर हर नाम समाई,

पाए, यो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सुपाए, नामहीन बिनसे दुख पाए। तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन भागा नाम न पाया जाए। बहुविध थाका कर्म कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार। विख्या मैर

आओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए, करी पाग साल सोच पवित्रा, हुण लाभ हो पू घर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए। संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक लेख लखाए। जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए। मलार महला पंजवा, खीर धार बारक जब होता, बिन खीरे रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे, ताको त्रिप्त अघाई। हम बारक पिता प्रवदाता, पूले बारक अनक लख बरिया। अनठौर नाही जय जाता रहाओ, चंचल मत बारक बपरे की। सर्प अगन कर मिले, माता पिता कंठ लाए रखे। आनंद सहज तब खिले, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी। तिस बारक पूख कैसी, नामृद नाम निदान ग्रे तेरे। मन बांछे सो लैसी, पिता कृपाल आग्या ए दीनी। बारक मुख मांगे सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहे। मोहे हृदय बसे नित चरना, मलार महला पंजवा। छगर विधि जोर आहार करया, तजो सगल अंदेसा। कार्य सगल आरंभ्यो करका, ठाकुर का पहारोसा। सुनिए बाजे बाज सुहावी, और पया मैं प्रेम पेखे।

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पय सागर, हर नानक चरण तिहाई। मलार महला पंजवां, कानघर बरस सगल जग छाया। पय किरपाल प्रीतम प्रा मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रखाओ। मिटे कलेश त्रिसन सा बूझी, पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरण निवारे, बौर न कतहु ताया। मन तन नाम निरंजन रातो, चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवां, बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन। चिते उलास आस मिल।

चित आवे, आड़ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा पाना, हुकम बूझे सो साच समाना, जप जप जीवे तेरा नाओ, तुझ बिन दूजा नाही थाओ, दोसो करते हो मर जाए, पाने बक्स पाने देश जाए।

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाउ। तोनत ललत गुनाग अनक पांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी। गिर तार थाल जाल पावन परपुर काट काट लालन शावनी नीकी। साज संग रामैया रस पायो नानक जाके पावनी नीकी। मलार मोहल्ला पंजवां गुरप्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर तारे। अरहाओ दर्श सबल्यो दर्श पेख्यो गए किल विख गए मन निर्मल उजियारे। बिस्म बिस्मे बिस्म पई अग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे। जन नानक सरण दुआरे मलार मोहल्ला पंजवा बरस सरस आग्या होय आनंद सगल भाग रहाओ। संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग। कान कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो।

कमला किरण आकाशी बिगसे सहज सुपाई प्रीतमा प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई यात्रक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे बिलब करे बिललाई कानहार कोर दसो दस बरस बिन जल प्यास न जाई मीन निवास उपजे जल गीते सुख दुख पुरब कमाई खेन तेल रह न सकै पल जर बिन मरण जीवन तिस ताई।

अंध नहीं सूझे, बदक कर्म कमावै। सतगुर मिले तां सूझस बूझस, सच मन ज्ञान समावै। निर्गुण दे

मन रे सतगुर सेव समाए, वड़े पागुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाओ, हर अपने पाने सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार, हर अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर के पाने सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाहो बाणी सत है गुरमुख बूझे कोए, वाह वाह कर प्रसाल आई है तेस जेवड़ अवर न कोए, आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए, साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए, अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए, हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए, हर कृपा ते सतगुर पाइए भेटे सहज सुपाए, मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार, मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार, बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदा का अभ्यास, हर नाम चेतना आवई न निज कर होवै वास, जमकाल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनाश, हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए, नदर करे गुर पेटिए हर नाम से मन आए, नानक नामे ही पत उपजे हर सोरहा समाए, मलार महला तीजा अष्टपदी कार दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

गुर के शब्द विचारी है, गुण में रहे समाए, अपना आप तोलसी, आपे मिले मिलाए, तिसकी कीमत ना पवे, कहना किशु ना जाए, हौ बलिहारी गुर अपने, जे सच्ची बूझ दित्ती बुझाए, जगत मुस्ते अमृत लुटिए, मन मुख बूझ ना पाए, विण नावे नाल ना चरसी, जस

0: गाओ।
1: गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाओ। नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाओ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन मसाया।

ते पौ उपज पाइये मोह द्वार पाए ते सहज पाइये मेरे ज्योति जोत अपार पाए ते पै जल लंगिये गुरमति विचार पाए ते निरपो पाइये जिदा अंत न पारावार मनमुख पै की सार ना जाननी तृष्णा जलते करे पुकार नानक नावे ही ते सुख पाया गुरमति उरतार श्लोक महला पहला रूपे कामे दोस्ती भुखे साधे गंड लबे माले कोल मिल मचल ऊंगे सौण पलंग पौके कोप खुआर हुए फक

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत आछे।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग हृदय राम गोविंद गुण सारंग हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानंग तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न हुए आनंग तर तार अपवित्र कर मानिए रे।

पाज हर रस रस हर गाट हर हो लिखे ललाट रहाओ खड़ कर्म क्रिया कर बहु बो विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जड़ जटा जड़ जाट कर पेख ना पाइये हर ब्रह्म जोग हर पाइये सत संगती उपदेश गुरु गुर संत जना खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी अत अगाहो तू पर पुरहया जल थले हर एक इको एक एक हर थाट तू जाने साबित बूझे आपे जन नानक के प्रभ काट कटे काट कटे काट हर काट कानड़ा महला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगाधो मत गुरमत हर प्रभ लादो तोर हो लिखे लादो रहाओ बिख माया संच बहु चिते विकार सुख पाएगे हर फाज संत संत संगती मिल सदगुरु गुर साधो जो छोहे पारस मनूर पै कंचन त्यों पत जान मिल संगती सुध होवत गुरमती सुध हादो जो काष्ट संग लोहा बो तरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगती गुर सदगुरु गुर साधो चार वर्ण चार आश्रम है कोई मिले गुरु गुरु नानक तो आप तरह कुल सगल तरा दो कानड़ा महला चौथा हर जगाव भगवान जगावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रखाओ तेरे जन त्यावे एक मान एक चित ते साधु सुख पावे जप हर हर नाम निधान उस्त करे प्रव तेरिया मिर साधु साध जना गुर सदगुरु भगवान जिन के हिरदे तू स्वामी ते सुख बल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हा

बल जाओ। कल युग मैं पाया जिन नाओ, कानड़ा मोहल्ला पंजवा, कीर्त प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनक बार कर बंदन संतन, ऊहां चरण गोविंद जी के बसना रहाओ, अनक पान कर द्वार ना पावो, होए किरपाल ता हर हर त्यावो, कोड़ कर्म कर दे ना सोदा, साध संगत मैं मन पर बोधा, तृष्ण ना बूझी बहु रंग माया, नाम लयत सर्व सुख पाया, पार ब्रह्म जप पए दयाल, कहो नानक तो छूटे जंजाल, कानड़ा मोहल्ला पंजवा, ऐसी मांग गोबिंद ते, तैर संतन की संग साधु का, हर नामा जा परम गते रहाओ, पूजा चरना ठाकुर सरना, तोई कुसल जो प्रभु जी उपरना, सबल होते दुर्लभ देही, जा को सदगुर मया करेही, अज्ञान परम बिन से दुख डेरा, जा के हृदय बसे गुर पैरा।

पंजवा तैन कहामन कौ कई केत है ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत योग कौ बेत है रहाओ दुख नाही सब सुख ही है रे एक है एकी नेत है बुरा नहीं सब पला ही है रे हार नहीं सब जेत सोग नाही सदा हर की है रे छोड़ नाही किश लेत है कहो नानक जान हर हर हर है।

आंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवन, नाम हमारे प्राण आधार है। हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विखम नाम हर तार है। अगम पदार्थ लाल अमोला,

पराशित दर्शन पेट मिटायो पयो परगास अंध उजियारा सहज समाज समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो किरपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लायो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जब तीर बिनसै मोह परम दुख पीर अरहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कद पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेटत नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मने सुख पाई है साध जना मिल हर जस गाई है रखाओ कर कृपा प्रभ दे बसेरो चरण संतन के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जस सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रापरसन रसना हर हर पूजन तृप्तानी अखियां कौ संतोख प्रदर्शन रखाओ करनन पूरयो जस प्रीतम कारमल दोख सगल मल हरसन पामन तामन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन सरन गई पूर्ण अबनासी आन उपाव थकत नहीं करसन कर गए लिए नानक जन अपने अंध कोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा ओ कत कपट खपट खल गरजत मरजत मीज अनक बरिया अरहाओ अंग मत अनरत कोमित हित प्रीतम पेखत प्रमत लाह गरिया अनित व्यवहार अचार विधहीनत मम मद मात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उधर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाओ गोविंद त्याग आन लाग गए अमरतो डार पूम पाग गए बिखे रस्यो आसक्त मूड़े ताहे सुखमान काम क्रोध लोभ व्यापेओ जन्म ही की खान पतत पावन शरण आयो उधर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अवलोको राम को मुखार बिंद खोजत खोजत

हठ निग्रह अतरैत बिटंगा हौ रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध अत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा मोहला पंजवां कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मेरे साध जरा पंच भागे चोर सहज सुखैनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्स प्यार रगाओ जैसी करी प्रा मोह्यो ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पे संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिलो जो पावत जन नानक ठाकुर रहो समाए एक तू ही तू ही तू ही कानड़ा मोहला पंजवा कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्यागिए गुमान मान पेखता दयाल लाल हां हां मन चर नरेन रखाओ हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान।

विकार सागर पतत मोह मान अंध बिकल माया संग तंद कर गए प्रभ आप काढ़ हो राख लियो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन।

मुख जोरो गुर गुर करत मन लोरो प्रे प्रीत प्यारो मोरो हरहाओ गृह से सुहावी आंगन चैना तोरो री तोरो पांच दूतन स्यों संग तोरो आए ना जाए बसे निज आसन ऊंद कमल बिगसोरो।

औरंगी सब एकत बचन चलावै गो गुरमुख एको एक पछाता गुरमुख होए लखावै गो गुरमुख जाए मिले निज महली अनहद शब्द बजावै गो जी जंत सब सहट्यो पाई गुरमुख शोभा पावै गो बिन गुर भेटे को मैल न पावै आए जाए दुख पावै गो अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मिलावै गो सतगुर मिलत महा सुख पाया

गुरु है सदगुर, मैं सदगुर शरण मिलावे गो। कानड़ा मोहल्ला चौथा, मान गुरमत चाल चलावे गो। जो मैगल मस्त दीजे तर कुंडे, गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो। रखाओ चलतो चले चले, दह दह दिस।

लोहा हिरन होवे संग पारस, गुण पारस को होए आवे गो रहाओ। सतगुर महापुरख है पारस, जो लागे सो फल पावे गो। ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा।

वेद है गुरमुख, गुर परचे नाम ते आवै गो, हर हर रूप हर रूपो होवै, हर जन को पूज करावै गो, सागत नार सदगुर नहीं किया, ते बेमुख हर परमावै गो, लोभ लहर स्वान की संगत, बिख माया क्रंग लगावै गो, राम नाम सब जा का तारक, लग संगत नाम ते आवै गो, नानक राख राख प्रा मेरे, सत संगत राख समावै गो, शक्का एक कानड़ा शंत महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद से उधरे जिन राम त्याए, जतन माया के कामना आए, राम त्याए सफल पाए, अन तन ते बड़ भागिया, सत संग जागे नाम लागे, एक चोन लिव लागिया, तजमान मोह विकार साधु लग तरो तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी बड़भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजे नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीव हर अमयो पीवै, जन्म मरना पागै, सत संग पाई।

नारायण सगले जंत पजो गोपालय जब तब संजम पूर्ण कालय नित पजो स्वामी अंतर जामी सबल जन्म सबाया गोविंद गायगे नित त्याई है प्रवान सोई आया जब ताप संजम हर हर निरंजन गोविंद तन संग चालय बिनवंत नानक कर दया दीजे हर रतन बंद उपालय मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मेरे परमानंदा प्रमिले स्वामी सुख गामी इस मन की पुनिया बजी बधाई सहजे समाई बौड़ दुख ना रुनिया ले कंठ लाए सुख दिखाए बेकार बिन से मंदा बिनवंत ना

तेरा जस स्वामी तिन काटे पाप कटोना तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना सब त्यावो आज सते जुगाद सते प्रतख सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना सरोक महला चौथा हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरमंत हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलया आए अचिंत हर आपे कड़ कड़ वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे पिखिया पाएदा साब सिट पाई जी जंत।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मनतन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर तीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेश घर एको मत गुरमत घर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो घर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर परे वहन जिन्ना सदगुर मनिया जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केतविद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर घर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर घर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पय नाइयन जिन हर मन मस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर घर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सदगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर घर चौंदया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सदगुर मेरा प्यारा देखया तिन को मिलया मेरा सदगुरु जिन को तुर मस्तक लेखया हर अगम ते आया गुरमती तिस रूप नहीं प्रव रेखया गुरभजन ते आया जिन्ना अगम हर ते ठाकुर सेव करल एकया साब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लार भगत वसिखया सलोक महला चौथा राम नाम राम रब रहे राम रामो राम रमीत घड़कड़ आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निट बसे जग

दिलाए, सदगुर मिले नाम उपजय, तृष्णा भुख सब जाए, नानक नामे रखतिया नामो पल्ले पाए पौड़ी, तुद आपे जगत्यो पाए कहे, तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायण, एक ना मेल गुरु तिन जीता, तारूत मगर प्रभ नाम है, गुर भजन सुभागे लीता, दुख दाल दिल सबो लह गया, जा नाओ गुरु हर दीता, सब सेवो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो, जिन जगत्यो पाए सबो वस कीता, सलोक महला चौथा, मन अंतर हो में रोग है, ब्रह्म फूले मनमुख दुर्जना, नानक रोग वंजाए, मिल सदगुर साधु सज्जना, महला चौथा, मन तन ताम सगारवा, जा देखा हर नैने, नानक सो प्रामय मिले, हो जीवा साध सुने पौड़ी, जगन्नाथ जगदीश सर करते, अपरंपर पुरख अतोल।

प्राप मुहे कब गल लावे गे रखाओ, हम बारक मुगद एयान पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पूल बेगार जगत पिद पावेंगे, जो घर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे, मुहे दूजी ना ही ठौर जिस पे हम जावेंगे, जो घर पावे भगत तिना घर पावेंगे, ज्योति ज्योत मिलाए ज्योत रल जावेंगे, हर आपे हुए किरपाल आप लिवलावेंगे।

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरं की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन को।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रहे ना सकीजै। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खेन जल बिन फूट मरीजै। महा अपाग अपाग है जिनके, जिन साधु तूर न पीजै। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझै, दंड तरमरा एका दीजै। सब तीर्थ वर्त जग पुन

रामा राम राम पूज करीजे, मन तन अर्प तरो सब आगे, रस गुरमत ज्ञान दरड़ीजे रखाव, ब्रह्म नाम गुण साग तरोव, नेत चुन चुन पूज करीजे, आत्म दियो दियो है आत्म, रस लागे पूज करीजे, विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल, विचर विचर रस पीजे, गुर प्रसाद पदार्थ पाया, सदगुर कौ इहो मन दीजे, निर्मोल अत हीरो नीको, हीरे हीर बिधीजे, मन मोती साल है गुर सब दी।

मांगो हर गुण नानक रब तरह प्रभाती महला पहला आवत किरे ना राख्या जावत क्यों राख्या जाए जिते होवा सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए जो करे सोई पर होए बा अवरण करना जाए रहाओ। जैसे हरड़ की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर भरियत है तैसो ही यो खेल खसम का जो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल

बनाए बहुरंगी सिद्ध उपाए प्रखेल किया कर कर वेखै करे कराए सर्ब जिया नू रिजक दिया कली काल में रव्या राम काट काट पूरया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रखाओ गुप्ता नाम वरते विज कल युग काट काट हर भरपूर रहया नाम रतन तिना हिरदे प्रगटया जो गुर सरणाई पज पया इंद्री पंच पंचे वसयाने खिमा संतोख गुरमत पावे तो तन तन हर जनवा

सो नरक पर एको सब एको प्रवर्त सब एक स्ते उत्पत चल नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रलै।

लेव उर मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम मिटो कुर्बान। हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ। आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान। कित विद क्यों पाइये प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान। सत संगत में हर हर वसया, मिल संगत हर गुण जान। वड़े भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान।

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, तिस गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रखाओ, जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कह सदा बल जाइए, हार सिमरन जि गुर ते पाईए, बूढ़ प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोहे नी माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया।

पार ब्रह्म आराधि अपने सदगुर कै बल जाय। आगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाईए, लहा खाट होइए धनवंता अपना प्रभु ते आईए। आठ पैर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ। पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती मोहल्ला पंजवा, सिमरत नाम किल सब नासे, सत्य नाम गुर दी नीरासे, प्रभ की दरगह शोभा बंते, सेव सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे पाई, सगले रोग दोग सा बिनसै, अज्ञान अंधेरा मनते जाई रहाओ। जन्म मरण गुर राखे मीत, हर के नाम से लागी प्रीत, कोट जन्म के गए कलेस, ज्योत भावे सो फल होस। ते गुर को हो सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम ते आई, ऐसा गुर पाई गे वड़ पागी, जिस मिलते राम लिव लागी।

बसे गुरचरना, निरपय साद परेहर सरना, आनंद सहज रस सूख कनेरे, दुश्मन दुख न आवे नेरे, गुर पूरे अपने कर राखे, हर नाम जपत केलबग सब लाथे, संत साजन सिख पय सुहेले, गुर

कर स्नान कर चक्र बनाए अंतर की माल तब ही ना जाए। एत संयम प्रभ किन ही ना पाया भगवती मुद्रा मन मोया माया रहाओ। पाप करे पंचा के बसरे तीर्थ नाए कह सब उतरे बौर कमावे हुए निशंक जमपुर बांध करे कालंक घूंगर बांध

ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजे शब्द बाजे आनंद रूपी मेरो रामैया हरहाओ बावन भीखू बाने भीखे पालते सुख लागला

परम प्रखोतमं तव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं परन पोखण करंत जिया विश्राम शादन देवंत दानं सिरजंत रतन जन्म चत्र चेतन वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरे अनेत रचना निर्मोत दानं परापूर बेण कुंचंते महीपते विपरीत बुद्धिं।

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निराश आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सुखण है दुर्वचन भेद परमं ताकत पिसरंगता सुरजन है अस्तित्वं सोग हरखं पय खीणंगता निर्भव पय अटवीयं महानगरवासं धर्म लखेण प्रामय साध संगम राम राम रमणं

मुख्यं पाशपंकी विमोन हर कर्णहारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर हे कामं नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चित हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब सील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समामण है।

करुणा न उपर्जते विख्यंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मरकट अनक शासन ताड़ंत जम दूत है तब संगे अधवंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रखया क्रोत ए लोभा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जी आभो प्रकारं अनक पांद बोडोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जया अकरणं क्रोत अखात खाद्यं असाज्यं सा समझया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हरे हे जन्म मरण मूलं।

तहंत जनमं नेत नेत कथंत वेद ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत साध हृदय अचुत बुझंत नानक बड़ भागी है उदयान बसनं संसारं संबंधी स्वान सियाल खर है विखम स्थान मन मोह मदरं मां असाध पंच तस्कर है हीत मोह पय परम ब्राह्मणं अंग फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध घोरं अगम तीर नय लंघन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगलिंग रोग खंडन है सा संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है श्यामलंग मधुर मानुखियं हृदयंग भूम वायरण है निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग संत सुवजन है अचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रते छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते अचंत पुरख कुटंब लीला नेत्यास विख्या विनोद प्रमंत प्रमंत भोजन महारयो शरण नानक करणामय हे जेबे हे रसगे मद्र प्रिया तोयं सत हदं परम बादं अवर्त इथ है सुध अशरण गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोर मतं बलवंत बलाद कारण है चरण कमल नय पजंत तरण समान तिग जन्मन है हे पपीर का ग्रस्ते

से चंदन है निकट बसंतो बासो नानक अंग बुद्ध ना भोते गाथा गोप गोपाल कथंग मथंग मान मर्दन है हतंग पंच स्तरेण नानक हर बाणे परहारण बचन साध सुख पंथा लहंता बड़ कर्मण रहंता जन्म मरणेन रमण नानक हर कीर्तन है पत पुरजेन चढ़ियंग न जड़ियंग पेड़ संपता ना बिहून बिखमता नानक भांत जोन बासुर रैणी पावनी सा संगेन लभंतंग बड़ पागण हर नाम गुण रमण नानक संसार सागर न व्यापण गाथा गूढ़ अपारंग समझणंग बिरला जन संसार काम तजणंग नानक गोविंद रमणंग साध संगम सुमंत्र साध बचना कोड दोख बिनासन हर चरण कमल ध्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण सुंदर मंदर सैन है जीन मध्य हर कीर्तन है मुक्त रमण गोविंद है नानक लब्ध अंग बड़ फागण हर लब्धो मित्र सुमितो पिदारण कदे ना चित्तो जा का अस्तिल तोल अमितो तोई नानक सखा जी संग कितो अबजसंग मिटंत सत पुत्र है सिमरताब हृदय गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अचुत नानक संसार सागर तारण है मरणंग विसरणंग गोविंद है जीवणंग हर नाम तिहावण है लबणंग सा संगेण नानक हर पूर्व लिखण दसन बिहून भुयंगंग मंत्रंग गारड़ी निवारंग प्याद उपाड़न संतंग नानक लब्ध कर्मण जद कथ रमणंग तरणंग सर्वत्र जीअण तस लगणंग प्रेम नानक प्रसादंग गुर दर्शन चरणार बिंद मन विद्यंग सिद्यंग सर्व कुशलण गाथा गावंत नानक भव्यंग परा पूर्वण शुभ बचन रमणंग कमणंग सा संगेण उदरणंग संसार सागरंग नानक पुनरप जन्म न लभ्यते वेद पुराण शस्त्र विचारंग एकंकार नाम उर्धारंग उलय समूह सगल उधारंग बड़भागी नानक कोतारंग सिमरणंग गोविंद नामंग उदरणंग कुल समूहण लब्ध्यंग सा संगेण नानक बड़भागी पेटंत दर्शन सर्व दोख परं त्यागी सर्व धर्म तिरणंतण है लब्धेन सा संगेण नानक मस्तक लिखेण होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारण सुखेन बैन रत्न रचनंग सुंबरंगण रोग सोग वियोगंग नानक सुख ना सुपन है पुनः मोहल्ला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद आद कलम अगा

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचल खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर खां सोई ज तन बताए सखी प्रयोग पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहालिया करन न सुनगी नाद करन मुंद कालिया।

न है तो लूट ले, आराम नाम है लूट। फिर पाशे पछताओगे, प्राण जाएंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो।

एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढया, कहूं न पाया ठौर, जिन हर का नाम न चेतेओ, कहां भुलाने और। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाहो, साकत संग ना कीजिए, जाते होए बिना हो। कबीर जग में चेत्यो जान के जग

की मौज में रहो अंत अर आद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, तैबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख के कह कहो तै ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख।

कस्तूरी भया पवर पए सबदास। ज्यो ज्यो भगत कबीर की त्यो त्यो राम निवास। कबीर गह गज परयो कुटंब कै कांठे रह गयो राम। आए परे तरम राय के बीचे तूमा ताम। कबीर सागत ते सुकर भला राखे आछा गाओ। ओ सागत बपरा

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निसंक। जो जन निर्दावे रहे तो गने इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर। भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे

कबीर सतगुर सूर में बायाबान जो एक लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई पूम बेकार बिन संगत यो मानई होए गई पाठ शार। कबीर निर्मल

सफल फलंत पीर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए ललाट मुक्त पदार्थ पाई है थाक ना अब खट काट कबीर एक घड़ी आदि करी आदि हूं ते आद भगतन से ती गोष्ट जो कीने सो लाभ कबीर भांग माशली सुरा पान जो जो प्राणी खाहे तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाहे नीचे लोयन कर रखो ले साजन कट माहे स्वर्ग खेलो पीसो किसी लखावो नाहे आठ जाम चौसठ करी तो

से ती दियो गया, तूला से ती रात, खड़ा पुकारे पातनी, बेड़ा कपरवात, लम्मी लम्मी नदी वह कंधी के रहेत, बेड़े नू कपर क्या करे जे पातन रहे सुचेत, फरीदा गली सो सज्जन वी ही, एक टूडें दी नाल हां, तुखां जो माली ही, कारण तिना मापिरी, फरीदा यो तन पौकना नेतने दुखिए कौन, कन्नी बुझे दे रहा किती वगै पौन, फरीदा रब खजूरी पकियां माखे नई वहन, जो जो वन्ये डीड़ा तो उम्र हथ पवन।

जंपो गुण बेमल सुजन जन केरे आमे नाम जा को फुरिया। इन सदगुर से शब्द रस पाया नाम निरंजन उर तरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक त्याग तत् संत सरे कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे छुड़त प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद परया ते पीवे संत करे मन मज्जन खुब जिनो सेवा करिया तिन पाओ निवार अनपय पद दीना शब्द मात्र ते उदर तरे कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे सदगुर मत गूढ़ बिमल सत्संगत आत्म रंग चिलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपय निरंजन करे लहा सदगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया इस प्रसाद फल पंच करे कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे आन पो उन्मान अगले लागी पारस फेटिया सहज करे सदगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिट्या जिन मात मरण पो भागा चित लागा संतोख सरे कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार निध अंतर तारयो दो पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारयो सदा चाहे हर पाए प्रेम रसया पे जाने सदगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उच्चरै ते अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बस अमे रस रसन प्रकाश मिलत सा उपजै

फुटे सतगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस दूर बजायो गुर रामदास कल उचरै तै अपाए अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक तिहायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो नामृद नाम निधान रिद सिता की दासी तय सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दिरड़ायो गुर राम दास कल उचरै तय खर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सदगुर शब्द अथाहो अमे थारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आजो नी संभवयो जगत गुर भजन तरायो अवगत अगोचर अपरपार मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निधान भगते पौतारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिहे निवारण सहज तरोवर फलयो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पाए सतगुर शब्द

सिद्धर जावे, नाम सो निधान पावे, गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवे जियो, सतगुर नाम एक लिव मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो, धर्म कर्म पू

लेवल आई है। हुन जाने को तेरा अपार निरभो निरंकार अकथ कथनहार तुझे बुझाई है। परम पूले संसार छुट्टो जूनी संघार।

सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे सुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर करे तरे उपरे लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नार दास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सहयुग जन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत को धरियंग हस्त कमल माथे पर तरियंग अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लैणा ताप जोत जग तारी।

नाम अखय निद अप्यो अप्यो हर नाम अखय निद त्यो जुग गुर सेवा कर फल लइयं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जे अमृत बजन बाणी साधु जन जप करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सबल संसार संसार सबल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन बंचे जाकी शरण सतगुर गुर सेव अला कद जाकी श्री रामदास तारण तरण संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन मरण पगा ए आई ए प्रतीत प्रतीत ही ए आई जिन जन कहे तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लाल काम क्रोध की बिरथा गई अब लोकया ब्रह्म परम सब छुटकया देव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास पया जस जन कह एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे स्नान स्नान करे प्रभात सुधमान गुर पूजा विद सहित करं कं चिंतन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल महे रया पूर बोविद वर्णन सद गुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जिनो बात निचल तू जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन भय क्रम सेविये सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नयन मधुर बयन कोड़ सैन संग सोभ कहत मां जसोद जिसै दही पाद खाए जियो देख रूप आतन रूप मोह महा मग पई किंकनी

कार तद कार मन गए अंध श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो सेवक कहे भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रसदा सलामत कहे न सके को तू कद का ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगणत तिन को मोह भया मन मत का 84 लख जोन उपाई रिजक दिया सबहु को तद का सेवक कहे भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवे।

भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुद को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिने आगर। गैर गंभीर अथा अत बड़ सुबर सदा सभ्यद हृतनागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर करबे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जोग कवक को पावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहित बिरंजस गावे जाको शिव मन गए न तजात कबलास कहो। जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कहो। सो तिन स गुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई। गुर रामदास को नाम निधान ध्यान अंतर गात तेज पुंज ते लोक प्रगास। देखत दर्श पटक परम भजत दुख परहर सुख सहज बेगास। सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह जो कुसुम सुबासे। वैद्यमान गुर आप थप्यो थेर ताचो तख्त गुरु रामदास। तारो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो सुमरत। हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिदर सिद्ध न छोडे सत। दान बडो अतवंत महाबल सेवक दास कहो यो तथ। ताहे का प्रवाह काहू की जाके बसीस तरयो गुरहत। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई। अपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नी अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व खो जंत फिरे। अविनाशी अचल अजो नी संभव पुरखोत्तम अपार परे। कारण कारण सुमरत सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। सदगुरु नानक भगत करी एक मान तन मन तन गोविंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हीयो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। नारद त्रू प्रहलाद सुदामा पुपुत हर के जोगण। अम्बरीक जय देवतर लोचन नामा अवर कबीर पण। तिनको अवतार पयो कल पिंतर जगतर परछायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। मनसा का स्मरण तुझे नार काम क्रोध मिट्यो जो तिण। वाचा का स्मरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण। कर्म कर तो दर्स परस पारस सार बल पड़ जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय हर परम पद पायो। जे सदगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खेन। जे सदगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सदगुर सिमरंत जी की तप्त मिटावे। जे सदगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे। तोई रामदास गुर बल पान मिल संगत तन तन करो। जे सदगुर लग प्रा पाई है तो सदगुर सिमरो नरो। जिन शब्द कुमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड्यो पास। ताते गौर ज्ञान प्रट पुजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास। कल कीर्त जो संत चरण मुड़ लग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ये अंगद अंग संग नानक गुर तेव गुर अमरदास कह गुरु रामदास। जिन सदगुर सेव पदार्थ पायो निज बस्त्र घर चरण निवास। ताते संगत सगन पाए पौ मान तुम मलियागर प्रगट सुवास। रूप प्रहलाद कबीर तलोचन नाम लय उपजो जो परगास। जे पिकत अत होय रहस्यमान तोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जानियो इन्नी भगत प्रेम लिवलाई। ताते अंग अंग संग पयो सायर तेन शब्द सुरत की नीव
ਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਥੋਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਉ, ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪਏ ਫੂਲੇ, ਸੁਧ ਧਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਏਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਉ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਏਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾੜ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਮੋਹ ਮਲਬ ਵਸ ਕੀਓ, ਕਾਮ ਗਏ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਭ ਅਮਾਨ ਸਿਉ ਚਾੜਿਓ। ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ, ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਮੰਨੈ, ਪਵ ਸਾਗਰ ਬੰਧਿਓ, ਸਿਰ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਿਰ ਆਦ ਪਤ ਸਚੋ ਤਖਤ, ਜੋਗ ਪੁਗ ਸੰਜੁਤ ਬਲ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਜ ਸਲ ਪਾਣ, ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਅਭਗਦਲ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਹੁ ਜੁਗੀ, ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਰ ਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ, ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੇ ਤੁਰ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਓਲੋ ਹੈ। ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਣ, ਜਰਾ ਜੰਮੇ ਆਰੋ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਿਰ ਥਪਿਓ, ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ, ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨਾ ਸਲ ਕਬ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਿਮਰੰਗ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਨਾਸੀ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲਨਾਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਬਲ ਧਾਰੰ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ, ਤੇ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੁਜਸ ਵਖਾਣਿਓ, ਭਗਤ ਜੋਗ ਕਉ ਜੈ ਤਵਾਰ, ਹਰ ਜਨ ਕਿਉ ਪਾਇਓ, ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਕਾਸਿਓ, ਹਾਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਓ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗ, ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਭਗਤ ਪੁੱਤਰ ਆਇਓ, ਬੜਭਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਓ, ਰਿਧ ਸਬਦ ਬਸਾਇਓ, ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਓ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਨਪਉ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇ ਸਤਜੁਗ ਆਲੀਣਾ, ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅਬ ਤੀਜ ਪਤੀਣਾ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੀਵ ਸਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ, ਖੇਲ ਗੂੜੋ ਕੀਓ, ਹਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ, ਬੇਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣੋ, ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਓ, ਸੁਜਸ ਕਲ ਕਵੀਨ ਵਿਖਾਣਿਓ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰਿਓ, ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਸਭ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ, ਆਜੋ ਨੀ ਸੰਭਉ, ਭਏ ਭੰਜਨ ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ, ਅਪਾਰ ਅਨੰਭਉ, ਆਗੇ ਗੈਣ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੈਣ, ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਦਾਤਉ, ਅਸੰਭਉ ਉਦਵਯੋ, ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੁ, ਨਾਨਕ ਆਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਲਾਇਓ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾ ਜਗ ਅੰਦਰ, ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗਤ ਸਿਵ ਰਹਿਤਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਬੜਭਾਗੀ, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਪਰਸੇਤਾ, ਭਏ ਭੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ, ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੁਝ ਜਸ ਭਗਤਾ, ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਨ, ਧਰਮ ਤੁਝਾ ਅਰਜਨ ਘਰ ਭਗਤਾ, ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ, ਸਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮ ਉਦਾਰ, ਅਹਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ, ਮਹਾਂਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਮਨ ਚਾਉ ਨਾ ਹੁਟੈ, ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ, ਨਮ੍ਰਿਤ ਨਾਨ ਖੁਟੈ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬਮੈ, ਤੈ ਚਿੰਦੋਵਾ ਤਾਣਿਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਰਾਜੋਗ ਰਹਿ ਜਾਣਿਓ, ਭੈ ਨਿਰਪੋ ਮਾਣਿਓ, ਲਾਖ ਮੈਂ ਅਲੱਖ ਲਖਾਇਓ, ਅਗਮੈ ਅਗੋਚਰ ਗਤ ਗੰਭੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ, ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਰਾਜਮੈ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ, ਅਪਾਰ ਸਰ ਸੁਬਰ ਫਰਾਇਓ, ਗੁਰ ਗੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਜਰ ਜਰਿਓ, ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ, ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ,
अलख अपार पुरसूर शब्द होमे निवार्यो पंचारण दलयो सुन सहज निज कर सहार्यो हर नाम लाग जग उधरयो सब गुरदे बसायो गुर अर्जन कल उच्चरै तै जन के कलश दी पायो सोरठ गुर अर्जन पुरख प्रमाण पारथो चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवार्यो पवजल सायर सेत नाम हरि का बोहे था तो सतगुर संघेत नाम लाग जग उधरयो जगते उदाहरण नाम तब गुरु तुठे पायो अब नहे अबर सर काम बारंतर पूरी पड़ी ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो तादे अंगद पयो तत सो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सदगुर थिर कियो अमर दास अमृत छतर गुर राम है दियो गुर राम दास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैन मूर्त पंज प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम ससंतोख तरयो ओर आद पुरख प्रतख लिखो अशर मस्तक तोर प्रट जोत जगमग तेज भूमंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूल सदा थेर लाए चित सनमुख रहो कल जुग जहाज अर्जन गुरु सग सिट लग बेतरो तेजन जाचो जगतर पर जानियत बस रैन बास जा कोहित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगयो बस ना ते बार पाए देखियत ताम स्यो अपर परंपर पुरुषो प्रेम लाग गयो बे भगवंत रस नाही औरे काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्प में अर्जुन गोर भगत के हेत पाए रहो मिले राम स्यो अंत न पावत देव सबे मोन इंद्र महासव योग करी हुन वेद बेरंच विचार रहे हो हर जापन छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माए करी जग और न जाए महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोट के दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद ते मद चू कह रे मन भेद बभेद न जान पियो पर तचर दे गुर अर्जन कह हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो जब लो नहीं पागल लार उदय तब लो भ्रमते फिरते बोतायो कल कोर समुद्र में बूढ़ थे कबू मिट गए नहीं रे पछतायो तत् विचार जय मथुरा जगतारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र पय रूप प्रट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस दे दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मान भय जिन जान्यो पयो ते संसार सोई तरण गागन नभ खंड मै जोत स्वरूपी रहो पर पान मथुरा कछ पेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर अजय गंग जल अटल शिव संगत सब नहावे नित पुराण बांचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मेरे नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो तो कवन कहे श्री गुरु मोयो देवपुरी मैं गयो आप

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद। श्लोक 12 ते वधीक महला पहला। उतंगी पै ओरी गहरी गंभीरी, ससर सुइया किव करी निम्न न जाए थणी, गच जे लगा गिड़बड़ी।

ना पदार्थ पाया अतुट परे पंडार। हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार। नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार। गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश। इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रकाश। काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए। एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए। जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए। बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए। जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए। सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए। नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए। मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चितराई। कीता करत्या बिरथा गया एक तिल साए न पाई। पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई। बिन सदगुरु जमकाल न छोड़ई दूजे पाए खुवाई। जो मन जांदा नदर न आवई जर पहुंचे मर जाई। पुत कलत मोहित है अंत बेली को ना सखाई। सदगुर सेवे सो सुख पाए नाव से मन आई। नांग से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाई। मनमुख नाम ना चेतनी बिन नावे दुख रोए। आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए। होमे अंतर मैल है शब्द न काढ़े तोए। नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंधले जिसमें अग्नि का वास। बाणी सुरत ना बुझनी शब्द ना करे प्रगास। ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर भजन न करे विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिवसदा विगास। हर ज्ञानिया की रखदा हों सब बलगारी तास। गुरमुख जो हर सेम दे जन नानकता का दास। माया पुयंगम सर्प है या केरिया बिखमाए। बेका मारण हर नाम है गुर गारड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखया तिन सतगुर मिलया आए। मिल सतगुर निर्मल होया बेखो में गया बिलाए। गुरमुखा के मुख उजले हर दरगे शोभा पाए। जन नानक सदा कुर्बान तेन जो चाले सतगुर पाए। सतगुर पुरख निर्वैर है नित हिरदे घर लिवलाए। निर्वैरे नाल वैर रचाएं दा अपने कर लू की लाए। अंतर क्रोध अंकार है अन दिन जले सदा दुख पाए। कूड़ बोल बोल नित पौक दे बिख खादे दूजे पाए। बिख माया कारण परम दे फिर घर घर पत कवाए। बेसवा केरे पूत ज्यों पिता नाम तिस जाए। हर घर नाम ना चेतनी करते आप खुवाए। हर गुरम कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए। जन नानक तिस बलिहारणे जो सतगुर लागे पाए। नाम लगे से ऊबरे बिन नावे जम पुर जावे। नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछतावे। चिंता ताप तरे गए तामन पया आनंद। गुर प्रसादी बुझिए सातन सुती नचिंद। जिनको पूर्व लिखया तिना पेटिया गुर गोविंद। नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन अपना गुर सबदी विचार। सतगुर का फाणा मन लैन हर नाम रखे उरतार। ऐथे उथे मनियन हर नाम लगे व्यापार। गुरमुख शब्द संजाप दे इत साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार। जम काल नेड़ ना आवई आ बख्शे करतार। नानक नाम रते से तनवंत हैन निरतन होर संसार।

जन की टेक हर नाम हर बिन नावे ठवर न ठाओ गुरमति नाओ मन मस सहजे सह सुमाओ वडभागी नाम त्याया ऐस लागा पाओ जन नानक मंगे तूड तेन तो सद कुरबाने जाओ लग चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार यो मोह माया सा पसरिया नाल चले न अंती वार बिन घर सांत न आवई किस आगे करी पुकार वडभागी सतगुर पाया बुझिया ब्रह्म विचार तिसना अगन सब बुझ गई जन नानक हर उर तार असी खते बहुत कमान दे अंत न पारावार हर कृपा करके बख्श ले हो हों पापी वड गुनेगार हर जियो लेखे वार न आवई तू बख्श मिला मनगार गुर तुठे गरपा मेलिया सब किल कट विकार जिन्ना हर घर नाम त्याया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के भय पाए जन्म मरण हिचल पय गुरमुख नाम त्याए गुर साधु संगत मिले हीरे रत्न लभन नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन मनमुख नाम न चेत्यो तिग जीवन तिग वास जेदा दिता खाना पहनना तो माना वस्यो गुणतास त्यो मन शब्द न भेद्यो त्यो होवे करवास मनमुखिया दोहा गणी आवन जान मुहियास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास हर हर नाम उर तारिया हर हिरदे कमल प्रगास सतगुर सेव ने अपना हों सद बलिगारी तास नानक तेन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास शब्द मरे सोई जन सिजे बिन शब्दे मुक्त न होई एक करे वो कर्म विगुते पाए दूजे परज वगोई नानक बिन सतगुरु नाओ ना पाई है जे सो लोचे कोई हर का नाओ आतवड़ ऊंचा ऊंची हुई ऊंचा होई अपड़ कोई न सकई जे सो लोचे कोई मुख संजम खच्छा ना हो भाई तर पेख पवे सब कोई गुर की पौड़ी जाए चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए बसे गुर शब्द विचारे कोए नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोए माया मोह दुख सागर है बिगद उत्तर तरिया ना जाए मेरा मेरा कर दे पचमुए होमे करत विहाय मन मुखा उरवार ना पार है अध विच रहे लबटाए जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु ना जाए गुरमती ज्ञान रतन मन वसे सब देख्या ब्रह्म सुपाए नानक सदगुर बोहित है वड़ भागी चढ़े

जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच होमे कर्म कमाम दे सब धर्म राए कै जाही गुरमुख हछे निर्मले गुर के शब्द सुपहाय ओना मैल पतंग न लगई जे चलन सदगुर पाए मनमुख झूठ न उतरै जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर के अंक समाए बुरा करे सो केहा सिजै अपने रोह आपे ही दजै मनमुख कमला रगड़ै लुजै गुरमुख होए तेस सब किज सुजै नानक गुरमुख मन स्यों लुजै जिन्ना सतगुर पुरख।

जे अन दिन रहे लिवलाए, जिन्ना प्री प्यार बिन दर्शन क्यो तृप्ती है, नानक मिले सो पाए, गुरमुख इओ मन रहसी है, जिन्ना प्री प्यार क्यों जीवन पिर बहारे, जा सो देखन अपना नानक जीवन पी हरे, जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चे लाया, राती अत डे हो नानक प्रेम समाया, गुरमुख सच्ची आस की जिद प्रीतम सच्चा पाई है, आन देना रह आनंद नानक सहज समाई है।

पौरानद गाए अष्टमाल कौशिक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावगी ते लंगी देवकरी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी ले पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बाण औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा।

उजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औरामा कामल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मेल

दूर। कथ न कथि न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार।

तिथ भगत वसै के लो कर आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेख नजर निहाल तिथ खंड मंडल वर पंड।

तीर्ज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नजर कर।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबलसूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तिर रहे समाए।

सो पुरख निरंजनु हर पुरख निरंजनु हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्याव है तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुगत पाए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तानो जिन हर त्याया जी जन नानक तन बल जासी तेरी भगत भंडार जी।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरथ शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग वेको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चर करता सोई, तू द्यापे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों किरपा कर है तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई ना है, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तिनह किया, पंकज मोह पग नहीं चल, हम देखा तैं डूबी अले, मन एक ना चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवां। पही प्रापत मान खुदे हुरिया, गोबिंद मिरन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कदै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम।

जप तप संजम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ति

संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हरलाहा, आगे बसन सोहेला। औद घटे दिन सुरै नारे, मन गुरमल का सवारे रहाओ। एहो संसार बिकार संसे मैं, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगा

श्री राग महल्ला पहला। कुंगू की काया रत्ना की ललता, अग्रवास तन सास, आठ सठ तीर्थ का मुख टिक्का, तित घट मत विगास, ओत मती सालाहना, सच नाम गुणतास।

सब मिलै संसार, नाउ सदाए अपना होवै सिद्ध सुमार। जां पद लिखै ना पवै सबा पूज खुवार, जिन कौ सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोए, ओना अंदर नाम निदान है। नामो प्रगट होए नाउ पूजियै नाउ मनियै, अखंड सदा सच सोए, खेहू खेर लाइयै ता जियो केहा होए। जलियां सब सियाणपां उठी चलिया रोए, नानक नाम विसारिया दर गया क्या होए। श्री राग महला पहला।

बिन गुण कामना आवई टै टेरी तनखे है मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमै निवरी पाहे रहाओ। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार तृष्णा अहनस अगली हमै रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप तन मन गुर पै वेचिया मन दी असर नाल त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस तू सर्व जिया प्रतपाल ही लेखे सास गिरास।

जो दिसै चलनहार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगह जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कस वट्टी लाई है तुलिया पूरै तोल कीमत किनै ना पाई है रिद मानक मोल अमोल भाई रे हर हीरा गुरमाहे सतसंगत सतगुर पाई है अहनसो शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाईऐ गुर प्रगास जो अग्न मरै जल पाया त्यों तृष्णा दासन दास जमजन दारन लगई ओ भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए सागत सच ना पावई कूड़ै कूड़ी पाए सच रते गुर मेले सचे सच समाए मन मैं मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर धन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला परमे पाहे न विजवै जे पवै दिस अंतर देस अंतर महल ना उतरै त्रिग जीवन त्रिगवेश होर कितै भगत ना

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए। जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवे जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटियो सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंगी है, दरगह पत परवान, नानक ते मुख उजले, तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो, वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है, जैसी निभ है नाल, अगे साहो सुजान है, लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो, सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है, क्यों तिन्ना सुख होए, खोटे वणज वणजे है, मन तन खोटा होए, फाही फाथे मिर्ग ज्यो, दुख कणो नितरोए, खोटे पोते ना पवे, तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पाता है, खोटना सी जस कोए, खोटे खोट कमावना, आए गया पत खोए, नानक मन समझ आई है।

बोल जय करनी तै पूरी मत, करनी बाजो कटे घट, प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आप पछाण बुझे सोए, गुर प्रसाद करे विचार, सो ज्ञानी दरगे प्रमाण। श्री राग महला पहला कर चौथा, तू दरियाओ दाना बिना, मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा, ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझै संभाली रहाओ, तू भरपूर जानिया मैं दूर, जो कश करी सो

जे तू साहिब आवै रोहे तू ओना का तेरे ओहे। असी बोल विगाड़ विगाड़े बोल, तू नदरी अंदर तो ले।

अंतरों दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए गुर कै पाणे जो चले दुख ना पावे कोए। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए। नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच में लावा होए। श्री राग महला तीजा जा पिर जाना अपना तन मन अगे धरे सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे भाई रे गुरबिन भगत ना होए बिन गुर भगत ना पाई।

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड़ गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सके दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। घड़ी मुहत का पाहुना का स्वार नहार माया काम व्यापिया समझै नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ। हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दात पहुतिया लावे कर तैयार जां होवा।

राख चखाया चौथै पोर पया कदी चित ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिस ते सोजी मन पई।

साधु की हो रेण का अपना आप त्याग, उपाव सियाणत सगल छड गुर की चरणी लाग। तिसै प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे भाग, तिसै प्राप्त भाई हो जिस देवे प्रभ आप। सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन से हमें ताप, नानक कहो गुर भेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का एको रखन हार, एक सका मन आसरा एको प्राण आधार। ते शरण आई सदा सुख पार ब्रह्म करतार, मन मेरे सगले उपाव त्याग। गुरपूरा आराध नित एक सकी लिवलाग रहाओ, एको पाई मित एक एको मात पिता। एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता, सो प्रभ मनो ना विसरै जिन सब किश वस कीता। घर एको बाहर एको थान थनंतर आप, जी जंतो सब जिन किए आठ पहर तिस जाप। एक सेती रतिया ना होवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोए। जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावे सो होए, गुर पूरे पूरा पया जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा। जिन्ना सतगुर स्यो चित लाया से पूरे प्रधान, जिन को आप दयाल होए तनु उपजै मन ज्ञान। जिन को मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम ते आए। सर्व सुखा सुखी उपजहै दरगह पैंदा जाए रहाओ। जन मरण का पाओ गया पाओ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटिया गुरदर्शन देख निहाल, थान थनंतर रव रहे।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावने।

मन कियां इच्छा पूरियां, पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग, करना हर पिछान। गुरप्रसादी मुखी उजला, जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसया, तजिया सब मान। पाया लाहा लाभ नाम, पूर्ण होए काम, कर किरपा प्रभ मेलिया, दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया, आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया, गुर का शब्द पहचान। भक्त जना को राखदा, अपनी कृपा धार, हालत पलत मुखी उजले, साचे के गुणसार, आठ पहर गुणसार दे, रते रंग अपार। पार ब्रह्म सुख सागर, नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा। पूरा सतगुर जे मिले, पाइए शब्द निधान, कर कृपा प्रभ अपनी, जपिए अमृत नाम।

कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाहो, वड भागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो, कर सेवा सुख सागर सिर।

निमाणिया प्रमाण तू तेरा संग समाओ, हर जपिया आराधिया आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवां। प्रीत लगी तिस सच स्यों, मरे न आवे जाए, ना वे छोड़िया विछड़ै समय रहा समाए, दीन

कर संगत नित साध की गुरचरण चित लाए रहाओ। नाम निधान प्याई है मस्तक होवै पाग, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लाग। हम मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सवाओ, एथे मिले वडियाईया दरगे पावै थाओ। करे कराए आप प्रभु सब किश्त सही हाथ, मारा पे जीवालदा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल। सतगुर कै उपदेशे है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार। रहाओ गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार। बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्थार। सहजे शिव तीरतिया पवजल उतरे पार, तीर्थ वर्त लख संजमा।

सतगुरु की सेवा लाग। जो दिसै सो विनसना, मन की मत त्याग रहाओ। ज्यो कूकर हर काया, तावै दै दिस जाए। लोभी जंत ना जानई, पख अपख सब खाए। काम क्रोध मद व्यापिया, फिर जोनी पाए। माया जाल पसारिया, पीतर चोग बनाए। तृष्णा पंखी फासिया, निकस ना पाए माए। जिन किया तिसै ना जानई, फिर आवै जाए। अनक प्रकारी मोहया, बहुविदेहो संसार। जिसनो रखै सो रहै, समर्थ पुरख अपार। हर जन हर लिव उदरे, नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवां, घर दूजा।

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हौ तुद विटों कुर्बान तेरे दर्शन कौ बलिहारण तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेव्या पाओ कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुट्टी है जिन अमृत तिना पिछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निधान गुरजेवड़ दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए सच्चे से तीरतया दरगह बैसन जाए करते हथ वड्याईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहेब सच टेक सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध बबेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवां गुर परमेसर पूजिय मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गोरिया गोचर निर्मला गुरजेवड़े अवर ना कोए गुर करता गुर करण हार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार गुरदाता हर नाम दे उदरै सब संसार गुर समरथ

तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सौंदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पर्दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना टाहे पुछ ना दे वैले अपनी कुदरत।

अंबड़ कोई न सकई, हों किसनो पुछन जाओ। वरना वरन ना पावनी, जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया, जय पावे तैं दे हुक्म।

गणत गण आवने आईया सुभा वे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउं प्ररावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी पाए रती रंगरास प्रेकी चेरी कांडी है लाली मन नाओ साची प्रीतना तुटई साचे मेल मिलाओ सबदरती मन वेदया हो सतबल हारे जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माहे समाए पेरी सालू नौ तनौ साचो मरे ना जाए नित रवै सोहागणी साची नदर रजाए साच धड़ी धन मांडी है कपड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख ना जानई साचे गुर कै हित प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रहन विहाए अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाए सेजै कंत महलड़ी सूती बूजना पाए हों सुती पिर जागना किसको पूछो जाए सतगुर मेली पै वसी नानक प्रेम सिखाए श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचा मान महत तू आपे देवन हार हर जियो तू करता करतार ज्यो पावे त्यो राख तू हर नाम मिले आचार रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीठ आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ गुर कै शब्द सलाहना घट घट डीठिया डीठ आपे सागर बोए था आपे पारिया पार साची वाट सुजान तू शब्द लंगावन हार ने डरिया डर जानिया बाजगुरु गोबार आश्र करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए गुर राखे से उबरे साचे सुन लाए हर जियो शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक ते तन मैल न लग गई सच कर जस्यो ताक नदर करे सच पाईए बिना मैं क्या साक जिनी सच पछाणिया से सुखिए जुगचार हमें तृष्णा मार कै सच रखिया उरता।

सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असर संगार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर पै का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागै सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिनना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेवियै गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईऐ पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटियै लिखिया लेख रजाए बिन हर नाम ना छुटियै गुरमत मिलाए मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हम मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी पाइए गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़ी है पी विकस असनेह जल मैं जियो पाए कै बिन जल मरण तनेह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बक्से भगत भंडार रहाओ रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अदको त्यों सुखकणो मंतन सांस शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जान अब पीर रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में है सार पर थल हरी आवले एक बूंद न पवी के कर्म लै सो पाई है किरत पया सिर देह रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल दोए आवटन आपे खवै दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुनिया सच वड़ियाई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सोजी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए ता की कीमत ना पवै जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाई है सच मिलै सुख होए सच्चा निहो ना टुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाई है तिरपमन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरै जे गुण का गहक होए खेल गए से पंखनू जो चुग दे सर तल घड़ी के मुहत के चलना खेलन अज के कल जिस तू मिलै सो मिलै जाए सचा पिड़मल बिन गुर प्रीत न उपजाए हों मैं मैल ना जाए सोहंग आप पिछाणिए शब्द भेद पति आए गुरमुख आप पिछाणिए अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेली है शब्द मिले पति आए मनमुख सो जी ना पवै विछड़ चोटा खाए नानक दर कर एक है अवरना दूजी जाए श्री राग महला पहला मनमुख भुलै भुलाई है भूली ठौर ना काए गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए ज्ञान पदार्थ खोया ठग्या मुठा जाए बाबा माया परम पुलाए परम पुली डोहागनी ना प्रियंक समाए रहाओ पुली फिर दसंतरी पुली गृहता जाए पुली डूंगर थल चढ़ाए परमे मन डोलाए तरों विशुनी क्यों मिले गर्म उठी बिललाए विछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यो पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुली है पेखी बहुत अभमान तीर्थ नाता क्या करे मन में मैल गुमान गुरबिन किन समझाई है मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत् विचार सात अने आप गवाया गुर कै शब्द सिंगार कर ही सो पिर पाया गुर कै हित अपार गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया मैं विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए
ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਆਪ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸੱਚੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ ਲਾਗਾ ਤਿਸੈ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮਿਲੇ ਸਬਦ ਅਪਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਸੁਤਬੰਧ ਪਕਰਨਾਰ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ ਠਗੌਲੀ ਹਉ ਮੋਈ ਸਾ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ, ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉਂ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤੋਖ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਕੂੜਾ ਮੋਹ ਨਾ ਵੇਖ, ਵਾਟ ਵਟਾਉ ਆਇਆ ਨਿਤ ਚਲਦਾ ਸਾਥ ਦੇਖ, ਆਖਣ ਆਖੇ ਕੇਤੜੇ ਗੁਰਬਿਨ ਬੂਝਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜੇ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਰਪੈ ਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸੇ ਪਲੇ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਨਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਸਰਨ ਆਈ ਛੁੱਟੀ ਮਨਮੁਖੋਟੀ ਰਾਸ, ਅਹਿਟ ਤਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ, ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਾਰ।

महले पहले सतारह अष्टपदियां, श्री राग महला तीजा घर पहला अष्टपदियां, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा।

ना मिटिया जाए। हर का पाणा भगती मन्या से भगत भय दर थाए। गुर शब्द दृढ़ावै रंग स्यों बिन कृपा लया ना जाए। जे सौ अमृत नीरी है पी बिखपल लागै ताए। से जन सच्चे निर्मले जन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का पाणा कमाम दे बिख हमै तज विकार। मन हटकत उपाय ना छूटी है सिमरत शास्त्र सोधो जाए। मिल संगत साधु उबरे गुर का शब्द कमाए। हर का नाम निधान है जसंत ना पारावार। गुरमुख से ही सोह दे जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है दूजा और ना कोए। गुर प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा। सच उगै गुर पाए। हर रस पीवै सहज रहै उड़ै न आवै जाए।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलबख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमख सिमरत तरिया। शास्त्र सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में, खटकर माते दुगणे, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्ब की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप हैराता, मुनि मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नवै प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती अपरसा, एक लूकना देवै दरसा, एक मन ही ज्ञाता, घाट ना किन्ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया, सुरग मछ पयाल जियो, हौं वारी हौं वारण, कुर्बान तेरे नाम नो रहाओ, तुद संसार उपाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेखै कीता अपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो, प्रगट पहार है जापदा, सब नावै नो परतापदा, सतगुर बाजना पायो, सब मोही माया जाल जियो, सतगुर कौ बल जाइए, जित मिले परम गत पाइए, सुर नर मुन जन लोच दे, सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, एहो जगत परम भुलाया, आपो तो दुखवाया, प्रताप लगा दोहागणी, भाग जना के नाही जियो, दोहागणी क्या निशानिया, खसमो कुथिया फिर निमाणिया, मैले वेस्त ना कामनी, दुखी रहन विहाय जियो, सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपनी, आपे लय मिलाए जियो, हुक्म जिन्ना नो मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया, सही आसे सुहागणी, जिन सह नाल प्यार जियो, जिन्ना भाणे कार रसाया, तिन विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानिए, जो सबसे ले मिलाए जियो, सतगुर मिलिया फल पाया, जिन विचों अह करण चुकाया, दुरमत का दो कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगता हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखिया, अपनी नजर कर निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिया, जित मिलिया नाम वखाणिया, सतगुर बाज ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हौ सतगुर विटों घुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नजर करे जे अपनी, आपे लय रलाए जियो, तू सबना माहे समाया, तन करता आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत धरी करतार जियो, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, मेरा प्रभ सब किश पाया, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवकी पैज रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो।

मात पिता सुत ने हो कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कै मन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस उलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किश अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप करे अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंधना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथा पहरै गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाने आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावै चोट ना खावै ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरैवन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तु ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिया कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पाली एवन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तसे न जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो

मित्र, हरनामा हर ना संभालो, हरनामा हर हर कदे ना संभाल, जे होवै अंत सखाई, एहो तन संपै माया झूठी, अंत छोड़ चले आप पछताई।

सुंदर स्वामी धाम भगत विश्राम आसा लग जीवते जियो मन तन गलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखै बन फीका जानिया भय किरपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निदमानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखणा

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे देवै ले हर आपे परम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुरसरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिए हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रह रास रहाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा सलोका नाल सलोक महला तीजा। रागां विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतना मूलक पाया गुर का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवै सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत न होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै। अंधा क्या करे नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दी बाण हर हर इक सह दा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखे बाहर घर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिख मतार। श्लोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल इक जा गंदे ना लहन एक ना सुत्या दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलाए का दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई तू आपे आवरदा सब नहीं थाई। हर तिसै त्यावो संत जनों जो ले छड़ाई। श्लोक महला पहला। फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लेखै पाए। महला दूजा। जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगे मर चलिया त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना। पौड़ी तुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दुए दीवे दस चार हट तुद साजे वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना वे आपई जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला। कुदरत करके

सरै सरैयत करै बिचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा, गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझै त्यावै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राज दे, तिन्हौ कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहिब कै रंग रह, कऊ ना तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक सह प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाय। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी सच है, करमी पल्लै पाए। पौड़ी